सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों, हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान। तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम

0: आज के सुविचार।
1: दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: भाई ने बोनो घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है माँ ने दुआ पिता ने उम्मीद ने सोरनी मुस्कान
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा
0: सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणिमान स्वागत करो हूं हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की बहन बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि जलवायु परिवर्तन में बारिश ना मौसम में अपने वृक्षारोपण नो हो महत्व है ने हरते आना फायदा अपना ने थाय है। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कनी बातें थायेगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमर तरह जू आप रेडियो अपनी बातें वाकर रेडियो 90.8 FM माते।

0: માઇન્ડ બનો ગીત તો આશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણે મન સ્વાગત કરા હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીત કે પહેલે અમે આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે જલવાયુ પરિવર્તન મેં બારિશના મોસમ મેં વૃક્ષારોપણનું શું મહત્વ હે ને હર ત્યાંના ફાયદા થઈ શકે તો આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી તો સૌથી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલિ જી
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો પરિવાર કા ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારી કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ જલવાયુ પરિવર્તન ઓર બારિશ કે મોસમ મેં વૃક્ષારોપણ કે મહત્વ કો લેકર
1: જી બિલકુલ તો યદિ હમ આજ કે દોર મેં જલવાયુ પરિવર્તન કે પ્રભાવો કો દેખે તો હમે સ્પષ્ટ સંકેત મિલતે હૈ કે કહીં ના કહીં प्रकृति संकट में है
0: बिल्कुल
1: आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देख रहे हैं तो प्रकृति का स्वरूप दिन ब दिन बदलता जा रहा है कभी समय से अधिक गर्मी कभी बेमौसम बारिश कभी अत्यधिक सूखा तो कभी अचानक आई बाढ़ ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम समझ पाते हैं कि ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं
0: बिल्कुल
1: ये परिवर्तन न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है बल्कि खेती हमारे पशुपालन मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे संकटपूर्ण समय में वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है जो प्रकृति को पुनर्जीवित करने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि वृक्षारोपण एक उपाय है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में समर्थ हो सकता है तो यहीं सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन आखिरकार है क्या और ये क्यों हो रहा है
1: जलवायु परिवर्तन का वास्तविकता में अर्थ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो हम अगर इसको एक सामान्य भाषा में बोलें तो हमारी जो पृथ्वी है इसमें सामान्य मौसम चक्र में जो लंबे बदलाव हुए हैं जो हमारे समय चक्र था या हमारे मौसम के जो अवधि या समय तय था उनमें लंबे बदलाव हुए हैं
0: बिल्कुल
1: कभी हम देखते हैं कि बारिश या तो बहुत लंबी चल रही है या बहुत कम समय में खत्म हो गई इसी तरह से सर्दी या गर्मी तो ये बदलाव जो है वो प्राकृतिक रूप से सदियों में होता है ये एक छोटे समय की घटना नहीं है जो एक बार हुआ दो बार हुआ और शायद फिर हम वापस उसको उतनी ही आसानी से बदल पाए
0: बिल्कुल
1: लेकिन पिछले 100 सालों में अगर हम इसको छोटे समय में भी समझना चाहें तो हमारे इंसानों के द्वारा जो किए गए काम हैं जिसमें कहीं ना कहीं औद्योगिकरण भी शामिल है
0: बिल्कुल
1: जंगलों की कटाई है या जमीन से निकाले जाने वाले जीवाश्म ईंधन है जिसमें प्रमुख रूप से हम जिसको जानते हैं वो पेट्रोल डीजल के रूप में जानते हैं और इस तरह के कचरों को जलाया जाना जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं इसी के साथ साथ में जो है हमारी बढ़ती जनसंख्या जहां हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है वहीं पर्यावरणीय दुष्प्रभाव

0: या पाला पड़ना, ये तापमान में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से जो हम अभी हमारे सामने नहीं देख पा रहे हैं, पर समुद्र का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जिस चीज को हम स्पष्ट रूप से अपने सामने देख पाते हैं वो हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसानों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जो कृषि की उत्पादकता है, खेत की फसल है उसकी उत्पादकता है, वो उनके तमाम प्रयास जो वो पहले करते थे उससे ज्यादा प्रयासों के बावजूद वो कम होती जा रही है। जंगल कहीं ना कहीं बहुत कम हुए हैं, जिसमें आग जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। तो ये दिखाती हैं कि तापमान बढ़ने से, अगर बढ़े हुए तापमान में एक चिंगारी भी जो है आग का रूप ले लेती है, हमारे वन्य जीवों के जो है आवास में कमी आई है। तो इसी तरह से ये बेमौसम प्राकृतिक आपदाएं जो हम झेल रहे हैं, ये इसके दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में एकमात्र उपाय वृक्षारोपण है, ठीक किस तरीके से एकमात्र उपाय है और ये कैसे सहायक है?
0: सबसे जरूरी चीज जो इस पृथ्वी पर जीने वाले हर जीव के लिए जरूरी है वो है ऑक्सीजन।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहली चीज, हमारी जिंदा रहने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमें पेड़ों से ही मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से यदि हम देखें कि इसके और फायदे क्या हो सकते हैं, तो पेड़ ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। स्थानीय हमारा जो पर्यावरण है या जलवायु है, इसको नियंत्रित करने में भी पेड़ों की अहम भूमिका है। और अलग अलग तरह के पेड़ अलग अलग तरीके से इस पर्यावरण में या जलवायु में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पेड़ हमें बाढ़ और मिट्टी के कटाव, इन दोनों से बचाने में जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
1: जी जी।
0: जल स्रोतों का संरक्षण यदि हम अपने स्तर पर न भी कर पाए तो पेड़ इसमें स्वतः अपनी प्राकृतिक भूमिका निभाते हैं और हमारे लिए जल को संरक्षित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से यदि जैव विविधता में इनके स्थान की बात की जाए, तो जो अलग अलग तरह के पेड़ हैं, ये जैव विविधता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर इनकी प्रजातियां कम या ज्यादा होंगी तो जैव विविधता का संतुलन भी बिगड़ने की संभावना है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि वृक्षारोपण किस तरीके से इसका एकमात्र उपाय है, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि वृक्षारोपण के लिए अनुकूल समय क्या है और किस तरीके से हमारे जो श्रोता साथी हैं वो इस बात का ध्यान रखें।
0: विशेष रूप से यदि हम हमारे आदिवासी अंचल की बात करें, हमारे वागड़ क्षेत्र की बात करें, वर्षा ऋतु में जून से लगा के सितंबर तक का जो समय होता है ये वृक्षारोपण के लिए सबसे अच्छा समय है।
1: बिल्कुल।
0: वैज्ञानिक भी जो है इससे व्यवहारिक रूप से जो है सही मानते हैं, और हमारे यहाँ परंपरागत रूप से भी इसी समय में वृक्षारोपण किया जाता रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे कि हमारे यहाँ पे सामान्य रूप से हरियाली अमावस्या कहा जाता है, तो इस दिन से वृक्षारोपण की शुरुआत की जाती है या पौधरोपण की शुरुआत की जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन से यदि शुरुआत करते हैं, इस पखवाड़े में पेड़ लगाए जाते हैं या पौधे लगाए जाते हैं, तो वो लंबे समय तक जो है जीवित रहते हैं।
1: जी जी।
0: ये हमारी जो है परंपरागत मान्यता भी है, और ये वर्तमान समय बिल्कुल वही आज जो है खड़ा है। इसके और यदि कुछ फायदे देखें, तो जैसे प्राकृतिक नमी इस समय ज्यादा उपलब्ध होती है, इसलिए भी हम इस समय का चयन करते हैं। क्योंकि जमीन गीली होती है तो वहां जड़ों को तेजी से बढ़ने में और जमने में अधिक सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर जड़ें अच्छे से जम पाती है, उसे पूरे समय नमी मिल पाती है, तो पौधे का जो शुरुआती समय है वो उसके जीवन के आगे जीवित रहने की संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल।
0: और यदि आर्थिक रूप से हम देखें कि इस समय का चुनाव क्यों, तो इस समय में यदि हम पौधरोपण करते हैं तो हमारे कई तरह के खर्च, जो हमारी लागत है पौधरोपण की, वो बच जाती है। जैसे पानी देना, खाद देना, क्योंकि कई सारी चीजें इस समय मिट्टी में किण्वित होके सड़ के स्वतः जो है खाद को बना देती है, और वो पौधे के लिए उचित मात्रा में उसको जरूरत के अनुसार जो है पोषण उपलब्ध कराती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि ये पौधे कहाँ कैसे हमारे श्रोता साथियों को लगाने हैं और पौधों का चयन उन्हें कैसे करना है।
0: बिल्कुल।

0: कहाँ और कैसे लगाना है इसके बारे में भी ये जरूरी है कि हम स्थान का चयन बड़ी सोच समझ के साथ करें, ताकि वो लंबे समय तक बने रहे और हमारा जो उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति हो पाए।
1: बिल्कुल।
0: तो सामान्य रूप से हमारे खेतों की मेड़ जो सबसे जरूरी जगह है, वहां पे हमें पौधे जरूर लगाना चाहिए। कुछ बड़े होने वाले पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, कुछ छोटे झाड़ी नुमा भी लगाए जा सकते हैं, जो हमारी मिट्टी और पानी दोनों को संरक्षित करते हैं हमारी मेड़ पे। इसी तरह से स्कूल के खाली मैदान में, उसके आसपास की जगह में पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, या पंचायत परिसर में लगाए जा सकते हैं। सड़क के किनारे, नहर के किनारे, इस तरह की खाली जगहों पे हम पौधरोपण कर सकते हैं, जिससे वो उनके जीवित रहने की संभावना और बढ़ती है। हमारे कोई ऐसे जल स्रोत हों जो गांव के तालाब हों, एनीकट हो, नदी हो, इनके आसपास पेड़ लगाएं। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख स्थान है। इसके अलावा यदि समुदाय को लगता है कि और किसी जगह पे वो पेड़ लगा सकते हैं, तो वो अपने गांव, स्थान और स्थिति के अनुसार जो है स्थान का चुनाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। यही सर, पौधों के चयन में उन्हें किन सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
0: पौधों के चयन की यदि हम बात करें, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे स्थानीय प्रजाति के जो भी पेड़ या पौधे हैं। यदि हम उनको वहां रोपित करते हैं, तो उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सामान्य रूप से यदि हम फल में बात करें, तो हम आम लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, जामुन लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पास स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हैं, टिमरू लगा सकते हैं, तो ये फल वर्गीय पौधे हम लगा सकते हैं। यदि हम चाहें कि हमें छाया मिले और हमारे पशुधन को भी जो है इससे पाला मिले, तो छाया और पाले के लिए जो है, हम छाया के लिए विशेष रूप से नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, इनको रोप सकते हैं। शुद्ध रूप से यदि चारे में बात की जाए, जिनकी छाया कम होती है बट जिनका चारा बहुत पौष्टिक होता है, तो हमारा बबूल है, खेजड़ी है, सुबबूल है, इस तरह के जो हमारे स्थानीय प्रजाति के पौधे हैं या पेड़ हैं, इनके पौधों को जो है लगाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो जल संरक्षण में हमको बहुत मदद करते हैं, जैसे करंज है, इमली है, कचनार है, बांस है, तो ये ढाल वाली जगह में भी आसानी से लग जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये मिट्टी के कटाव और जल संरक्षण में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को पौधे जो है वो कहाँ, कब और कैसे लगाने हैं और पौधों का चयन उन्हें कैसे करना है, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि वृक्षारोपण के बाद रखरखाव में उनकी क्या भूमिका रहती है?
0: वृक्षारोपण के बाद इनका रखरखाव वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम वृक्षारोपण के बाद इनका रखरखाव नहीं कर पाएंगे, तो शायद इनको लगाने का कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो स्थानीय स्तर पे जैसे कि हम देखते हैं, पौधे के आसपास कुछ कांटेदार सूखी झाड़ियों को लाके डाल दिया जाता है शुरुआती चरण में, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो भी किया जा सकता है, जिससे हमारे पशुधन जो है अनायास उनको नुकसान न पहुंचा दे। पौधरोपण के बाद कम से कम 2 साल तक जो कठिन समय होता है पौधों के लिए, वो गर्मी का होता है, तो उस समय थोड़ा सा उनकी सिंचाई में यदि ध्यान दिया जाए, तो जरूर वो पौधा हमारा लगाया हुआ जो है पेड़ में तब्दील हो ही जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से अगर कहीं कीट या रोग नियंत्रण वाली बात आती है, तो हम कई सारी हमारी खेती में जो है सुझाव देते हैं पेड़ पौधे और फसल के लिए, कि किस तरह से बहुत आसानी से बनाए जा सकने वाले गोमूत्र, गोबर या पौधा आधारित जो कीट नियंत्रक हैं, वो जब हम हमारी फसलों के लिए बनाते हैं, तो उन पौधों पे भी थोड़ा सा उनका छिड़काव कर दिया जाए।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से हम हमारे स्थानीय युवा समूह हो या बच्चों को यदि एक समिति जैसा बनाए या वृक्ष मित्र बनाए, एक एक पौधे की जिम्मेदारी दें, तो वो उसका ख्याल रख पाएंगे और बेहतर तरीके से यदि कोई समस्या होगी तो वो अपने बड़े बुजुर्गों को बता सकेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उसका रखरखाव सही ढंग से हो।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर अपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ये बताया है कि जलवायु परिवर्तन में बारिश के मौसम में वृक्षारोपण का क्या महत्व है और किस तरीके से इसमें हमें ढेर सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सिमकी भाई बोनो अवड़े अपने व्यस में मनीष जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घड़ी असल तरीका तक घना कानी बातें बताड़ी है। आशा कर हूँ कि आ हंगरी बातें आपने गमी होगा क्योंकि अवे टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि आज 1 अगस्त का दिन है और आज के दिन विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि ये जो सप्ताह है वो माँ के दूध के महत्व, शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और मातृ शिशु पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों आइए सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं और आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज से ही स्तनपान सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है और जो स्तनपान सप्ताह है श्रोता साथियों, वो माँ के दूध के महत्व और मातृ शिशु पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आइए श्रोता साथियों, इस विशेष अवसर पर जानते हैं कि जीवन के शुरुआती दिनों में स्तनपान क्यों जरूरी है। तो इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम से विषय विशेषज्ञ जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारे बीच जुड़ रहे हैं श्रीमान डॉक्टर वैभव जोशी, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कुपड़ा में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
1: सर नमस्कार। सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। तो सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं वैभव जोशी, यहाँ पर मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कुपड़ा में काम कर रहा हूँ।
1: सर, जैसा कि आप स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कुपड़ा में स्थानांतरित हैं, तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है वो क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि परिवार, समाज और जो विशेषकर जो माताएं हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उनमें स्तनपान को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए स्तनपान 6 महीने तक कंटिन्यू करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। तो सर, बच्चे के जन्म के बाद माँ को कितनी देर के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? क्या पहले घंटे की कोई विशेष महत्व है?
2: मेडिकल में कहते हैं कि जितना जल्दी स्तनपान शुरू हो जाए बहुत अच्छा रहता है, और जो शुरू का 1 घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। तो शुरू का 1 घंटा जो है उसको, उसमें अगर हम जितना जल्दी स्तनपान कराएंगे तो बच्चे की रिकवरी, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हमको 1 घंटे के अंदर जो स्तनपान है शुरू करना रहता है, क्योंकि संक्रमण का खतरा इसमें ज्यादा रहता है, इसलिए हमको स्तनपान 1 घंटे के अंदर शुरू करना है।
1: बिल्कुल। लेकिन सर, हम देखते हैं कि कई लोग पीले गाढ़े दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे फेंक देते हैं, तो क्या ये सही है या बच्चे के लिए कितना जरूरी है?
2: जो शुरू में माँ से निकलने वाला जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वो बच्चे के लिए एक अमृत के समान है।
1: जी जी।
2: और कई लोगों में ऐसी अवधारणा है कि ये इससे दूध से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, परंतु ये जो पीला गाढ़ा दूध है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पोषण, सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी गाढ़े दूध में होता है, जो शुरू में अगर बच्चे को मिलता है तो ये एक मकान की बात ही, अगर उसकी नींव मजबूत रही
1: जी जी,
2: तो वो बच्चा का जो आगे का भविष्य है बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम हर महिला को, हर जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको सजेस्ट करते हैं कि शुरू का जो 1 घंटा है उसके अंदर जो, मतलब शुरू के 3 दिन निकलता है ये पीला गाढ़ा दूध, वो बच्चे को पिलाना बहुत आवश्यक।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही क्यों देना चाहिए? इस दौरान पानी, शहद या जन्म कुटी, जो परंपरागत तौर पर अन्य चीजें दी जाती थी, उनसे क्या नुकसान हो सकता है?
2: शुरू के 6 महीने में जो माँ के दूध में पर्याप्त पोषण है और जो पानी की मात्रा है वो बच्चे के लिए सफिशियंट है।
1: बिल्कुल।
2: और बच्चे का जो पाचन है वो उन्हीं चीजों को पचा पाता है। अगर आप ऊपर से कोई जन्म गुटी या जैसे लोगों में है कि शहद चटाए या उसके हाथ से, तो बच्चे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और बच्चे की पाचन क्षमता खत्म हो जाती है। तो शुरू के 6 महीने, वैसे हम कहते हैं कि जब तक बच्चा दूध पिए तब तक दूध पिलाना चाहिए, परंतु 6 माह तक तो बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए।
1: जी जी, बिल्कुल सर। तो यही मैं जानना चाहूंगी कि माँ के दूध से बच्चे को कौन कौन से पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऐसे गुण मिलते हैं जिससे उससे लाभ होता है?
2: जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जो माँ के दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, उसके एंटीबॉडीज और कई सारे इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल।
2: अगर वो पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन, अवयव और सारे इम्यूनोग्लोबिन अगर बच्चे को मिलते रहेंगे, तो उससे बच्चे का जो संपूर्ण विकास है या सर्वांगीण विकास है वो बहुत अच्छी तरह से होगा, वो कई सारी बीमारियों से बच सकता है।
1: जी सर। तो यही अब मेरा सवाल है आपसे कि स्तनपान कराने से बहुत सी बार माँ को ये लगता है कि उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा, उसका शरीर जो है वो बेढोल हो जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है?
2: ये एक बहुत गलत अवधारणा है। जो महिला, जैसे जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके शरीर के अंगों का विकास होता है या डेवलप होते हैं, जैसे ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, गर्भाशय की साइज बढ़ जाती है, परंतु अगर जो महिला 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसका जो पुनः अपनी पुरानी शेप में आना या जो पुराने अंग है, जैसे ब्रेस्ट शायद वापिस शुडोल हो जाना, या उसका जो गर्भाशय है, जो दूसरे अंग है, प्रजनन के अंग है, उनका वापिस अपनी पुनः अवस्था में आना ब्रेस्ट फीडिंग से ज्यादा प्रभावी होता है, जबकि अगर कोई महिला है जो बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है तो उसका वापिस से शेप में आना उतना मुश्किल हो जाता है। तो अगर महिला बच्चे को कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है 6 माह तक, तो वो अपना डिलीवरी से पहले वाला जो शरीर है वो प्राप्त जल्दी कर सकती है।
1: बिल्कुल। और इससे माँ के स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ पहुँचते हैं?
2: महिलाओं में हम देखते हैं अधिकतर जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसका खतरा थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है नॉन स्टॉप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो शब्द है उसका मतलब है कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, इसमें एक बूंद पानी भी नहीं आएगा, इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं हमारी भाषा में। तो अगर 6 माह तक बच्चे को माँ सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है तो उससे माँ में एक तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, उसके बाद में ये एक प्रकार से इसको लैम मेथड भी कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि अगर महिला स्तनपान कराती है लगातार तो महिला में किसी प्रकार के ऊपर से कॉन्ट्रासेप्शन लेने की या गर्भ निरोधक दवाई लेने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर वो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो अंडों का उत्सर्जन नहीं होता है, तब तक वो अगली बार प्रेगनेंसी होने की खतरा कम रहता है।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने महिलाओं पर होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में हमें बताया है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि यदि माँ को लगता है कि उसका दूध कम बन रहा है तो उसे क्या करना चाहिए?
2: अगर माँ को लगता है उसका दूध कम बन रहा है तो वैसे उसे कोशिश करनी चाहिए कि दोनों स्तनों से बारी बारी स्तनपान कराए, और ज्यादा से ज्यादा दिन में हम कहते हैं कि 10 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए महिला को।
1: बिल्कुल।
2: और ये देखे कि बच्चा स्तनपान करने के बाद में सो रहा है या टॉयलेट पेशाब कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब बच्चा रो रहा है भूख से स्तनपान कराने के बाद भी। वैसे जहां तक मेरा मानना है कि अगर वो लगातार स्तनपान बच्चे को चिपका के रख करके स्तनपान कराती है तो कहीं हद तक ये समस्या समाप्त हो जाएगी, पर उसके बावजूद भी अगर महिला को लगता है कि बच्चा स्तनपान कराने के बाद में रो रहा है या उसका पेशाब नहीं आ रहा है या पेट नहीं भर रहा है तो वो अपने नजदीकी कोई भी उपस्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के CHO या बड़े सेंटर पे जाकर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वगैरह से संपर्क कर सकती है, सलाह ले सकती है।
1: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, यहीं स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है, कौन सी गलतियों से महिलाओं को बचना चाहिए?
2: स्तनपान कराने का जो सही तरीका उसको हम कहते हैं सीधा, समीप और सामने, यानी बच्चा जो है वो एक सीधी लाइन में हो, बच्चे का सिर और बच्चे का जो शरीर है वो एक लाइन में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। उसके बाद में जब महिला बच्चे को स्तनपान कराए तो समीप, मतलब उसका जो शरीर है बच्चे को चिपका के रखे, बच्चे का मुंह पूरा खुला होना चाहिए, यानी कि सिर्फ बच्चा है वो सिर्फ निप्पल को चूसे नहीं, निप्पल के आसपास का जो गहरा काला भाग है एरियोला उसको भी सक करें, और दूध पीते हुए बच्चे के जो नासिका छिद्र हैं वो खुले होने चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे का दूध पीते पीते मर गया, क्योंकि एक तरफ से उसके मुंह के अंदर माँ का निप्पल है और जो नासिका छिद्र है वो भी पैक हो गए, तो बच्चा सांस कैसे लेगा घबराहट की वजह से। तो बच्चा एक तो जागृत अवस्था में हो तभी फीडिंग करानी चाहिए, और उसके बाद में शरीर से चिपका रखना चाहिए, और दूध पिलाने के बाद में डकार दिलवाना बहुत जरूरी है, वरना पेट में गैस बनने की समस्या ज्यादा रहती है।
1: जी सर। और यही जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, खेत में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चों को स्तनपान कराना कैसे जारी रख सकती हैं?
2: जैसे हमारे एरिया में ऐसी परेशानी आती नहीं है, खास करके जो मेट्रो सिटी है जहाँ वर्किंग वुमन है, अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कम से कम आपको दिन में 10 से 12 बार हर 2-2 घंटे के अंतराल के अंदर फीडिंग करानी है। पर अगर जैसे महिला काम काजी है तो दूध को आप जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे अगर ठंडा है उसमें आप 24 घंटे तक दूध खराब नहीं होता है, तो जो मिल्क सकर करके आता है जिससे मिल्क को महिला मैन्युअल तरीके से ब्रेस्ट को दबा करके अपना मिल्क है वो एक साफ स्टराइल कटोरी के अंदर निकाल के ढक के रख दे, और घर पे कोई भी उसका पिता हो या उसकी दादी हो या कोई भी महिला दूसरी हो, जब भी बच्चा हो चम्मच या कटोरी चम्मच के माध्यम से उस बच्चे को दूध पिलाता रहे, ताकि महिला अगर उसके वर्क प्लेस पे या खेतों में कहीं भी हो तब भी बच्चे का जो स्तनपान का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो।
1: बिल्कुल सर। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं जो हैं उनकी जीवन शैली बदल गई है, इस कारण हम देखते हैं कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती थी उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, आजकल सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो इसके बाद जन्म के तुरंत बाद स्तनपान तुरंत शुरू किया जा सकता है?
2: देखो, मेडिकल ये कहता है कि जितना जल्दी हो स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, परंतु अगर जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो हम आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है उसके अंदर स्तनपान कराते हैं। पर अगर सीजेरियन के बाद में अगर महिला को अगर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, महिला और बच्चा दोनों सामान्य है, तो भी हम स्तनपान शुरू कर सकते हैं, पर अगर सीजेरियन के 4 घंटे के अंदर तो हमको किसी भी हालत में स्तनपान शुरू करा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। यही परिवार के जो सदस्य हैं जैसे कि दादी, सास और पति, माँ को स्तनपान के दौरान किस तरह से महिला को सहयोग करना चाहिए?
2: एक महिला दूसरी महिला को अच्छा सपोर्ट कर सकती है तो जो सास है वो उस महिला के दूसरे घर के कामों में मदद करे ताकि जो महिला है कम से कम 6 माह तक बच्चे को प्रॉपरली ध्यान दे सके।
1: बिल्कुल।
2: जिससे बच्चे के ऊपर उसका अटैचमेंट बढ़े और जो दूसरी चीजें हैं जो समाज में फैली हुई धारणाएं हैं कि बच्चे को जन्मकुटी देना है, शहद देना है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव जो महिला है उस पे नहीं बनाया जाए कि नहीं तुझे इसको शहद चटाना ही पड़ेगा या जन्मकुटी पिलानी ही पड़ेगी। उसके अलावा एक हमारी एक टर्म आती है जिसको कहते हैं कंगारू मदर केयर, जिसमें बच्चे की त्वचा और माँ की त्वचा को चिपका के रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चे की जो हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान गिरने से बचाया जा सकता है। तो इसमें हम जो दादी या उसका पिता या कोई भी घर का दूसरा सदस्य ये इस चीज में महिला की मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल। और सर हम देखते हैं कि समाज में कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं स्तनपान को लेकर, तो उसको लेकर क्या सही जानकारी आप समाज तक पहुंचाना चाहेंगे?
2: देखो कुछ भ्रांतियां हैं, सबसे पहली भ्रांति है जो हमने बात करी थी कि पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए जो अपवित्र होता है, खराब होता है, ये सबसे पहली भ्रांति है जिसको इसका खंडन यही है कि जो पीला गाढ़ा दूध है जो शुरू के 3 दिन निकलता है वो पीला गाढ़ा दूध एक अमृत के समान है जो बच्चे के जन्म से 1 घंटे शुरू होता है और 3 दिन तक हर माँ को बच्चे को पिलाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी चीज जो भ्रांति है कि बच्चे को आप शहद, जन्म बूटी इस तरह कोई चीज पिलाए, ऐसी कोई चीज नहीं पिलानी चाहिए बच्चे को आप, वरना संक्रमण का खतरा, दस्त लगना, ये सारी चीजें हो जाती। तीसरी गलत भ्रांति है कि जो महिलाएं कई बात मान जाती हैं कि चलो ठीक है हम इसको पानी नहीं पिलाएंगे, पर महिला कई बार मेरे पास आती है कि डॉक्टर साहब ये ऐसी बात है कि ये पहला वाला बच्चा तो हमारे सर्दी में हुआ था तो इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ी, पर ये दूसरा तो मई जून में हुआ इसको पानी नहीं पिलाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली हर में जितने भी अगर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी लोग उनको समझा रहा हूँ कि अगर आप समझे, आप उनको इस तरह समझाएं कि आपके दूध में जितनी पानी की मात्रा है वो इस बच्चे के जितनी जरूरत है उतने लिए पर्याप्त है, उस तरह समझे। आप उसको अगर बोलेंगे तेरा दूध पानी है तो वो लड़ने भी हंसते आपसे। इस तरह से आप उसको बोलेंगे आपके दूध में जितनी पानी की मात्रा है वो बच्चे के लिए सफिशियंट है, ऊपर से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल। तो सर आपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। यही अब मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत हो?
2: अगर महिला बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रो रहा है या ठीक से सो नहीं पा रहा है,
1: बिल्कुल,
2: या बच्चा टॉयलेट नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद में टॉयलेट कर रहा है, इसका मतलब उसका दूध उसके पेट में जा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी महिला अगर उस बच्चे को दूध पिला नहीं पा रही है और बच्चा टॉयलेट नहीं कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, या महिला में कोई ब्रेस्ट से संबंधित है जैसे कटे हुए या इन्वर्टेड निप्पल है, सोर निप्पल है, एंगोरेज ब्रेस्ट है,
1: बिल्कुल,
2: तो उस कंडीशन में उस महिला को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपने नजदीकी अगर सब सेंटर पे CH हो उससे राय लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, तो यही जो ये हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं उसको लेकर समाज, युवा, बच्चे, माँ, सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: ये जो हमने पूरी बात करी उसके जो मुख्य पॉइंट है, सबसे पहली बात जो सबको जाननी चाहिए कि एक तो स्तनपान जो है वो जितना जल्दी हो सके उसको शुरू किया जाए। दूसरी चीज है शुरू के 3 दिन का जो पीला गाढ़ा दूध है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है वो बच्चे के लिए एक अमृत के समान है जो बच्चे को देना ही देना है। तीसरी चीज है कि 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करानी ही करानी है। चौथी चीज है कि बच्चे को ऊपर से आपको कोई जन्म गुट्टी, शहद, अतिरिक्त पानी ऐसा कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। पांचवी जो चीज है बच्चे की पोजीशनिंग, बच्चा सिर्फ निप्पल को सक नहीं करे, पूरा मुंह खुला होना चाहिए, उसके बाद में बच्चे की जो बॉडी है वो सीधा समीप इस अवस्था में हो। और जो छठी चीज है कि महिला को कम से कम 6 माह तक बच्चे पे फोकस करने दे, घर के दूसरे कार्यों में जो महिला की सास है या दादी है या बच्चे के जो पिता है वो उस महिला को समर्थन दे।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से ये जान पाए हैं कि ये जो स्तनपान सप्ताह है ये क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे के उद्देश्य क्या है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा,

बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मित्रता के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले जीवन नहीं जी सकते, हमें हर कदम पर किसी न किसी के सहयोग, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: जीवन के बहुत सारे रिश्तों में यदि कोई रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बंधन के और बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है तो वो होता है दोस्ती का रिश्ता। सच्ची दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने समय बिताने का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि एक ऐसा संबंध है जो विश्वास, सम्मान, सहयोग और त्याग की मजबूत नींव पर टिका होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे युवा साथियों से इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में भी गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जो न केवल हमारी मुस्कान का कारण बनता है बल्कि मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है। जी हाँ साथियों, आज का विषय है सच्ची दोस्ती और युवा साथी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी, की युवावस्था जीवन का सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण दौर होता है। यही वह समय है साथियों जब हम अपने भविष्य के सपने देखते हैं, नए फैसले लेते हैं, करियर बनाते हैं और जीवन की नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। जागृति जी, इस सफर में अगर कोई रिश्ता सबसे अधिक हमारा साथ देता है तो वह है सच्ची दोस्ती।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्त केवल वह नहीं होता जिसके साथ हम हंसते हैं बल्कि वह होता है साथियों जो हमारे आंसू बिना कहे समझ ले। इसलिए ये कहा भी गया है कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ न छोड़े।
1: बिल्कुल कशिश, युवावस्था जीवन का वो दौर है जब व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। इसी समय लिए गए निर्णय उसके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में अगर युवाओं को अच्छे मित्र मिल जाए तो उनका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है, वहीं गलत संगत उन्हें लक्ष्य से भटका सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा जाता है कि मित्र चुनना भी जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, सच्ची दोस्ती का अर्थ केवल सुख के समय साथ रहना नहीं है बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा मित्र तो वही होता है जो हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की प्रेरणा दे, जो हमारी सफलता में सबसे अधिक खुश हो और असफलता में सबसे पहले हमारा हौसला बढ़ाए।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, सच्ची दोस्ती में दिखावा नहीं होता बल्कि अपनापन होता है कशिश। इसमें स्वार्थ नहीं होता बल्कि समर्पण होता है और यही कारण है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में सैकड़ों लोगों से हमारी पहचान हो जाती है। हमारी श्रोता साथियों जो फ्रेंड लिस्ट है वो काफी लंबी हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हर व्यक्ति हमारा सच्चा दोस्त नहीं होता जागृति जी। सच्ची दोस्ती लाइक, कमेंट या फॉलोवर्स की संख्या से नहीं मापी जाती बल्कि विश्वास, सम्मान और ईमानदारी के साथ साथ अपनापन से बनती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि एक सच्चा दोस्त हमारी सफलता पर दिल से खुश होता है और असफलता में हमें संभालता है। दोस्तों, वो आपकी गलतियों पर ताली नहीं बजाता बल्कि सही रास्ता आपको दिखाता है। वो आपकी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसे ताकत बनाने में मदद करता है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि युवाओं के जीवन में कई तरह के दबाव होते हैं जैसे कि पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता का दबाव, परीक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं, भविष्य की योजनाएं और सामाजिक दबाव। ऐसे समय में जागृति जी, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारी बात सुन ले तो हमारा मन हल्का कर दे और सही सलाह हमें दे दे तो आधी परेशानी अपने आप ही हमारे युवा साथियों की कम हो जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि साथियों, युवावस्था में व्यक्ति अनेक अनुभवों से गुजरता है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, पारिवारिक अपेक्षाएं और सामाजिक दबाव, कई बार ये सारी चीजें युवाओं को तनाव में डाल देती है कशिश। ऐसे समय में एक अच्छा मित्र उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अगर एक सच्चा दोस्त है तो वो कठिन समय में हिम्मत देगा, सही निर्णय लेने में वो हमारी सहायता करेगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा, निराशा से हमें बाहर निकालेगा और सकारात्मक सोच की तरफ हमें विकसित करेगा, हमें अच्छी अच्छी बातें बताएगा ताकि हम आगे बढ़ सके।
0: जी
1: जब
0: हाँ।
1: युवा अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं तो वे नई नई बातें सीखते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम दोस्ती के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना मनोरंजन एक और पैरे से गीत के साथ हम कर ले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी मित्रता के महत्व को लेकर, तो साथियों जैसा कि गीत से पहले हमने आपसे बात की थी कि युवा जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है, सच्ची दोस्ती का वास्तविक अर्थ क्या है, यही हम बात करते हैं। अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, जीवन में हर व्यक्ति मित्र कहलाने योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल मनोरंजन या स्वार्थ के लिए साथ होते हैं श्रोताओं, जबकि कुछ जीवन भर साथ निभाते हैं। अच्छे मित्र की पहचान ये कि वो सत्य बोलता है, गलत कार्यों से रोकता है, मेहनत करने की प्रेरणा देता है, सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता और हर परिस्थिति में वो हमारा साथ देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके विपरीत हम बताना चाहेंगे हमारे साथियों को कि बुरा मित्र गलत आदतों की ओर हमें जोड़ देगा, समय और धन की बर्बादी कराएगा, झूठ बोलना सिखाएगा, पढ़ाई और लक्ष्य से दूर करेगा, केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ देगा। युवाओं को मित्र चुनते समय केवल व्यवहार नहीं देखना है श्रोताओं आपको, बल्कि उनके विचार और संस्कार भी देखने होंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा दोस्त नहीं होता। साथियों, सच्ची दोस्ती की कुछ पहचान होती है, जैसे कि वो हमारी सफलता से जलते नहीं है बल्कि खुश होते हैं, हमारे रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं साथियों। और ऐसा दोस्त जो जरूरत पड़ने पर बिना बुलाए साथ आपके खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मित्र श्रोता साथियों जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है, जिन्हें हमें संजो कर रखना होता है। क्योंकि दोस्ती जितनी खूबसूरत होती है जागृति जी, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है।
0: जी हाँ,
1: यदि दोस्त सही हो तो जीवन संवर जाता है, लेकिन यदि मित्र गलत संगत वाला हो तो जीवन की दिशा बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे युवा साथी कई ऐसे हैं जो दोस्तों के दबाव में आकर नशे की आदत, गलत संगति, समय की बर्बादी और कह सकते हैं कि हिंसा और अनुचित गतिविधियों की ओर बढ़ जाते हैं। कई बार वे तो अपनी पहचान भी खो बैठते हैं, क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्त चुनते समय श्रोता साथियों केवल ये मत देखिए कि वह कितना लोकप्रिय है, बल्कि ये

0: देखिए कि उसके साथ रहने से आप बेहतर इंसान बन रहे हैं या नहीं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता। सच्चे मित्र एक दूसरे के विश्वास की रक्षा करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दोस्ती में भी सम्मान उतना ही आवश्यक है श्रोताओं। यदि हम अपने मित्र के विचारों, भावनाओं और निर्णयों का सम्मान करेंगे तभी मित्रता लंबे समय तक बनी रहेगी।
0: जी
1: दोस्ती
0: हाँ।
1: कभी अधिकार जताने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करने का नाम है। आज के समय में बहुत सारे युवा तनाव, चिंता और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंता उनके मन पर प्रभाव डालती है। ऐसे समय में सच्चा मित्र मानसिक संबल बनता है। जब हम अपने मन की बात किसी विश्वसनीय मित्र से साझा करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मित्र हमारी समस्याओं को समझते हैं, हमें नई दृष्टि देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच्ची दोस्ती केवल खुशियां ही नहीं देती बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथी श्रोता साथी, कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है जागृति जी।
1: जी हाँ,
0: सच्चा दोस्त आपकी कमियों का मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि आपको सुधारने का प्रयास करेगा। दोस्तों, यदि आपका मित्र आपको गलत रास्ते से रोकता है, आपकी आलोचना करता है या आपकी गलती बताता है दोस्तों, तो उससे आपको नाराज होने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार वही सलाह हमें बड़ी गलतियों से बचा सकती है।
1: जी हाँ,
0: आज जागृति जी हम देखते हैं कि अधिकांश बातचीत मोबाइल और सोशल मीडिया पर होती रहती है। ऑनलाइन दोस्त बनाना हमारे युवा साथियों के लिए काफी आसान हो गया है, लेकिन ऐसे में भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है। यानी कि श्रोता साथियों, डिजिटल माध्यम अच्छे हैं लेकिन वास्तविक रिश्तों की जगह नहीं ले सकते वे। किसी मित्र के साथ बैठकर बातचीत करना, उसकी आंखों में देखकर उसकी परेशानी समझना और उसके साथ समय बिताना, ये अनुभव किसी चैट या इमोजी से नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया के साथ साथ वास्तविक रिश्तों को भी समय देना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कशिश कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी हमें असफलता मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा मित्र वही है जो असफलता में हमारा आत्मविश्वास लूटा है, गलतियों से हमें सीखने की प्रेरणा दे, निराशा में आशा का दीप जलाए, हमें हार मानने से रोके।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे मित्र जीवन की कठिन राहों को भी आसान बना देते हैं। श्रोताओं, दोस्ती का अर्थ हर बात में साथ देना नहीं होता। अगर मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोकना भी सच्ची मित्रता है।
0: जी जी।
1: अगर कोई मित्र नशे में है, हिंसा, झूठ या किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उसे समझाना भी हमारा कर्तव्य है। सच्ची दोस्ती वही है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए, न कि गलत रास्ते पर ले जाए। दोस्ती केवल संबंध नहीं बल्कि जीवन का विद्यालय भी है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। तो आज के युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम जो युवा हैं वो भारत का भविष्य है। अगर युवा सही मित्र चुनेंगे, अच्छे संस्कार को अपनाएंगे और सकारात्मक सोच विकसित करेंगे तो वे न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे कशिश, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हमें ऐसे मित्र बनने का प्रयास करना होगा दोस्तों जो दूसरों को आगे बढ़ाए, निराश लोगों में आशा जगाए और कठिन समय में उनका सहारा बने।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो श्रोता साथियों, अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची दोस्ती हमें खुशियाँ देती है, कठिन समय में हिम्मत देती है और गलत रास्तों से बचाती है, साथ ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाती है जागृति जी। ऐसे में हमारे युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसे मित्र बनेंगे जो विश्वास, सम्मान, ईमानदारी और संवेदनशीलता को अपने रिश्तों की नींव बनाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों मजबूत रिश्ते ही मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत समाज का निर्माण करते हैं।
1: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मित्रता के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे थे कशिश, कुछ छोटी मोटी बातें जरूर रह गई, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी मित्रता के महत्व को लेकर, तो अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे सुंदर उपहार है।
1: बिल्कुल।
0: धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं श्रोताओं, लेकिन एक सच्चा मित्र जीवन भर हमारी सबसे बड़ी ताकत बना रहता है।
1: जी हाँ,
0: युवा अवस्था में बनी अच्छी मित्रता व्यक्ति के चरित्र, सोच और भविष्य को नई दिशा देती है। इसीलिए मित्र चुनते समय बाहरी आकर्षण नहीं बल्कि उसके संस्कार, विचार और व्यवहार को महत्व देना होगा।
1: जी हाँ,
0: हम केवल अच्छे मित्र खोजने का प्रयास न करें बल्कि स्वयं भी ऐसे मित्र बन जाए जिन पर कोई विश्वास कर सके। जब युवाओं की दोस्ती विश्वास, सम्मान और सहयोग साथ ही सकारात्मक सोच पर आधारित होती है कशिश, तब युवाओं का जीवन सफल, समाज मजबूत और राष्ट्र समृद्ध बनता है। इसलिए याद रखिए, सच्ची दोस्ती केवल रिश्तों की पहचान नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और यही ताकत युवाओं को सही दिशा देती है, उन्हें गिरकर संभलना सिखाती है और उनके सपनों को साकार करने का साहस देती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल।
1: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको हमारे कार्यक्रम का पता हम बताना चाहेंगे।
0: जी हाँ, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है पर्वतों के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जब किसी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो, नदियाँ जीवनदायिनी हो, जंगल समृद्ध हो और प्रकृति संतुलित हो, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना साकार होती है।
0: जी हाँ,
1: इन सभी का आधार है हमारे पर्वत। श्रोताओं, पर्वत केवल ऊंची चट्टानों का समूह नहीं है, बल्कि अंजलि जल, जंगल, जलवायु, जैव विविधता, संस्कृति और सुरक्षा के महान संरक्षक है।
0: जी जी।
1: अगर पर्वत सुरक्षित है तो हमारा वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी सुरक्षित है। इसीलिए पर्वतों का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि सच्चे स्वराज का भी प्रश्न है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पर्वतों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, पर्वत केवल धरती की ऊंचाई नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति, प्रकृति की समृद्धि और भविष्य की सुरक्षा है। अगर हम पर्वतों को बचाएंगे तो नदियाँ बचेंगी, जंगल बचेंगे, जीवन बचेगा और सच्चे स्वराज का सपना भी साकार होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, धरती की ऊंचाई केवल पर्वतों से नहीं मापी जाती बल्कि उन मूल्यों से मापी जाती है श्रोता साथियों, जो पर्वत हमें सिखाते हैं, जैसे कि दृढ़ता, धैर्य, त्याग और संरक्षण। जब हम स्वराज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में राजनीतिक स्वतंत्रता का विचार आता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जागृति जी, सच्चे अर्थों में स्वराज केवल शासन की स्वतंत्रता नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, आत्मनिर्भरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना भी है।
0: बिल्कुल।
1: इस दृष्टि से यदि किसी प्राकृतिक धरोहर का सबसे बड़ा योगदान है तो वह है हमारे पर्वत। पर्वत केवल चट्टानों के विशाल समूह नहीं है श्रोता साथियों, वे जीवन के संरक्षक हैं, वे नदियों के जन्मदाता हैं, जंगलों के रक्षक हैं और जलवायु के संतुलन करता है, जीव विविधता के संरक्षक हैं और जागृति जी हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार स्तंभ भी है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, पर्वतों की रक्षा करना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि सच्चे स्वराज की रक्षा करना है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि भारत का भौगोलिक स्वरूप पर्वतों के कारण ही इतना समृद्ध है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरावली, दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी घाट जैसे पर्वत श्रृंखलाएं देश की प्राकृतिक धरोहर है। सदियों से ये पर्वत आंधियां, बाढ़, भूकंप और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मानव जीवन की रक्षा करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं अंजलि कि पर्वत हमें संदेश देते हैं कि कठिनाइयों के सामने अड़िग रहना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है और यही संदेश सच्चे स्वराज का भी है। हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। भारत की अधिकांश प्रमुख नदियाँ हिमालय और अन्य पर्वतों से निकलती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी जो नदियाँ हैं वो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है।
0: बिल्कुल।
1: खेती, उद्योग, पेयजल और श्रोता साथियों बिजली उत्पादन सब इन्हीं नदियों पर निर्भर है। यदि पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो नदियाँ सुरक्षित रहेंगी, यदि नदियाँ सुरक्षित रहेंगी तो खेत हरे भरे रहेंगे, गांव समृद्ध होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जल संरक्षण की शुरुआत श्रोता साथियों पर्वत संरक्षण से ही होती है। जागृति जी, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान और श्रोता साथियों प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर्वत इस संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं, वे तापमान को नियंत्रित रखते हैं और जागृति जी हवाओं की दिशा को भी प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में अंधाधुंध कटाई होगी तो इसका असर पूरे देश की जलवायु पर पड़ेगा।
0: जी हाँ।
1: इसलिए पर्वतों की रक्षा करना केवल पहाड़ों को बचाना नहीं श्रोता साथियों बल्कि पूरे देश के मौसम और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे दुर्लभ वनस्पति, औषधि, पौधे, पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली कई औषधियाँ इन्हीं पर्वतीय वनस्पतियों से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर इन क्षेत्रों का संरक्षण नहीं किया गया तो अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे लिए विलुप्त हो सकते हैं। प्रकृति का प्रत्येक जीवन पर्यावरण के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण सच्चे स्वराज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि हमारी सुरक्षा का प्राकृतिक कवच है।
0: बिल्कुल।
1: कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हमारे सैनिक इन्हीं पर्वतीय सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। यदि पर्वत न होते तो सीमाओं की सुरक्षा कहीं अधिक कठिन होती। इसलिए पर्वतों का सम्मान करना उन सैनिकों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है जागृति जी, जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा की प्राकृतिक ढाल हमारे पर्वत हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज बात कर रहे हैं हम पर्वतों के महत्व को लेकर, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर,
0: हाँ

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से जैव विविधता का जो खजाना है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही सुरक्षित रहता है, यही बात आती है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की।
1: बिल्कुल।
0: तो जागृति जी, भारत में पर्वतों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कैलाश जैसे अनेक तीर्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ऋषि मुनियों ने पर्वतों की गोद में ही तपस्या की और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया।
1: जी हाँ।
0: कह सकते हैं कि पर्वत हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा, विनम्रता का संदेश देते हैं और यही भावना भारतीय संस्कृति की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग पर्यटन, बागवानी, औषधि खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प से अपनी आजीविका चलाते हैं। सेब, अखरोट, चाय, मसाले और अनेक कृषि उत्पाद पर्वतीय क्षेत्रों की देन है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, अगर इन क्षेत्रों का सतत विकास किया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी अंजलि, और यही आत्मनिर्भर भारत और सच्चे स्वराज का मार्ग है। आज हम देख रहे हैं कि पर्वत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, अवैध खनन, अनियोजित निर्माण, प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और अनियंत्रित पर्यटन, इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जल संकट, भू संकलन, बाढ़ और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियां और भी बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इन सब में हमारे युवा साथी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अगर देश का युवा संकल्प ले तो पर्वत संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश दे सकते हैं, जल स्रोतों की साफ सफाई में भाग ले सकते हैं, इसी के साथ पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब युवा केवल अधिकारों की नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी समझे। हर नागरिक कुछ छोटे छोटे प्रयासों से पर्वत की रक्षा कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग न करें, इसी के साथ पर्यटन के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, वृक्षारोपण करें, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं और श्रोता साथियों, अवैध खनन और जंगलों की कटाई का विरोध करें, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें, प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करें। ऐसे छोटे छोटे प्रयास ही जागृति जी मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, महात्मा गांधी जी ने स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं माना था, बल्कि हम हर कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि उन्होंने आत्मनिर्भरता, नैतिकता और जिम्मेदार नागरिकता से जोड़ा था। अगर हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करेंगे श्रोताओं, तो स्वराज हमारा अधूरा रह जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज तो वही है जहाँ विकास और पर्यावरण साथ साथ चले, जहाँ नदियाँ स्वच्छ हो, जंगल सुरक्षित हो, पर्वत हरे भरे हो और आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संपदा सुरक्षित मिले।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं अंजलि कि पर्वत हमें धैर्य सिखाते हैं, संयम और संतुलित का पाठ पढ़ाते हैं, यही मूल्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल पर्वतों की सुंदरता देखने की नहीं है बल्कि उनके महत्व को समझने की है। पर्वत हमारे जीवन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार है। अगर हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपनी साझी विरासत मानना होगा।
0: बिल्कुल।
1: पर्वतों का सम्मान करना होगा, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा। याद रखिए श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल संसदों में नहीं है बल्कि नदियों की स्वच्छता में है, हरे भरे जंगलों में है, सुरक्षित पर्वतों और जागरूक नागरिकों के आचरण में दिखाई देता है। अंजलि, जब पर्वत सुरक्षित होंगे तब जल सुरक्षित होगा, जब जल सुरक्षित होगा तब जीवन सुरक्षित होगा, और जब जीवन सुरक्षित होगा तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होगा। इसीलिए श्रोताओं, पर्वतों की रक्षा का संकल्प हमें लेना होगा, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा ही राष्ट्र की समृद्धि और स्वराज की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमारे देश भारत को प्रकृति ने अनेक अनमोल धरोहर दी है।
1: बिल्कुल।
0: इनमें नदियाँ, जंगल, झीले, समुद्र, पर्वत सभी प्रमुख हैं। पर्वत केवल ऊंची ऊंची चट्टानों का समूह नहीं होते श्रोता साथियों, बल्कि वे जीवन की, संस्कृति, सुरक्षा और समृद्धि के आधार हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि पर्वत न होते तो नदियाँ नहीं होती, हरियाली नहीं होती, मौसम संतुलित नहीं रहता और मानव जीवन भी संकट में पड़ जाता। पर्वत प्रकृति के प्रहरी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सदियों से पृथ्वी और मानव जीवन की रक्षा करते आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को पर्वत प्रकृति की अनमोल धरोहर को समझना होगा। वे हमें जल, जंगल, औषधियाँ, स्वच्छ हवा, जीव विविधता, आजीविका, संस्कृति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व जागृति जी पर्वतों से ही जुड़ा हुआ है। यदि पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो नदियां बहती रहेंगी,
1: बिल्कुल,
0: और जंगल जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आज आवश्यकता श्रोता साथियों केवल पर्वतों की सुंदरता की प्रशंसा करने की नहीं बल्कि उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है, इसलिए हम सबको पर्वतों को प्रदूषण, अंधाधुंध कटाई और अवैध खनन से बचाना होगा। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करके हम प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की कि पर्वतों का क्या महत्व है, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

फिर तो मस्त हवा।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से पर्वतों के महत्व को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, इंसान की सबसे बड़ी भूख हमेशा रोटी की नहीं होती, कई बार वह और थोड़ा पानी की होती है। जी हाँ, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, थोड़ी और तारीफ और थोड़ी और सफलता। लेकिन इस थोड़ा और की दौड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर्याप्त को ही भूल जाएं, जो हमारे पास पहले से मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन शब्द शायद पर्याप्त है, क्योंकि इसे बोलने के लिए जेब से ज्यादा मन का भरा होना बहुत जरूरी है।

साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बार फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहां हम जीवन के उन सवालों पर बात करते हैं जो किताबों से कम और अनुभव से ज्यादा सीखे जाते हैं। जी हाँ, आज का विषय सुनने में छोटा है लेकिन इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीने का एक दृष्टिकोण है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, क्या कभी ऐसा दिन आया है जब आपने कहा हो अब मेरे पास जितना है उसके लिए मैं आभारी हूँ, या फिर हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने आ गई। नई साइकिल मिली तो मोटरसाइकिल चाहिए, और मोटरसाइकिल मिली तो कार, कार मिली तो बड़ी कार, घर बना तो बड़ा घर, मोबाइल खरीदा तो कुछ महीने बाद नया मॉडल चाहिए। दोस्तों, इच्छा होना स्वाभाविक है, प्रगति करना भी आवश्यक है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारी इच्छाएं हमें आगे बढ़ा रही हैं, या हम उनकी अंतहीन दौड़ में अपने वर्तमान की खुशियां खोते जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम किसी इच्छा के विरुद्ध नहीं है दोस्तों, यह उस संतुलन की बात है जहां मेहनत भी हो, सपने भी हो, और साथ ही ये एहसास भी हो कि मेरे जीवन में पहले से बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। यही अब बात करते हैं, पर्याप्त का मतलब यह नहीं है कि हम सपने दिखना छोड़ दें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम मेहनत करना बंद कर दें। इसका मतलब है जरूरत और लालसा के बीच अंतर समझना। जी हाँ, ये समझना कि कब आगे बढ़ना है और कब रुककर उस सफर का आनंद लेना है जिसे हमने मेहनत से तय किया है। जो व्यक्ति दोस्तों हर समय केवल अगले लक्ष्य को देखता है, वह अक्सर उस मंजिल की खुशी भी महसूस नहीं कर पाता जहां वह आज खड़ा है। जिसके पास सब कुछ है वह भी बेचैन हो सकता है, और जिसके पास सीमित साधन है वह भी संतुष्ट हो सकता है। फर्क चीजों में नहीं दोस्तों, बल्कि सोच में होता है। पर्याप्त कहना हार मानना नहीं, अपने वर्तमान का सम्मान करना होता है। आज अगर हम बात करें कि और की संस्कृति क्यों बढ़ रही है, तो दोस्तों आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर दिन हमें बताया जाता है कि आपके पास जो है उससे बेहतर कुछ और है। नया फोन, नई चीज, नई पहचान, नई उपलब्धि, धीरे धीरे हम तुलना करने लगते हैं, और तुलना का कोई अंत नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिखाई देगा। ऐसे में पर्याप्त शब्द हमारी जिंदगी से गायब होने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम संतुष्ट हो जाएं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन संतोष और ठहराव एक जैसी बातें नहीं है। एक किसान अच्छी फसल होने पर खुश भी होता है और अगली फसल की तैयारी भी करता है, यही संतुलन है। संतोष हमें मेहनत से नहीं रोकता दोस्तों, बल्कि लालच से बचाता है। इसलिए कई माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हर सुविधा देना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यदि बच्चों को यह नहीं सिखाया गया हो दोस्तों कि जो मिला है उसकी कदर कैसे करें, तो वह हर दिन नई चीज को कुछ समय बाद सामान्य मानने लगेगा। इसलिए कृतज्ञता का संस्कार घर से ही शुरू होता है, जो कि बच्चों को माता पिता को देना चाहिए। इसी के साथ जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है, इसको लेकर कोई अगर आपसे सवाल करे, तो दोस्तों कभी सोचिएगा कि यदि आपके पास पैसा हो लेकिन स्वास्थ्य न हो तो क्या होगा, यदि आपके पास बड़ा घर हो लेकिन परिवार में अपनापन न हो तो क्या होगा, यदि प्रसिद्धि हो लेकिन मन में शांति न हो तो क्या होगा, तो क्या वह जीवन वास्तव में समृद्ध कहलाएगा। दोस्तों, जीवन की सबसे अनमोल चीजें खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान, सुकून, ये तभी मिलते हैं जब मन पर्याप्त कहना सीखते हैं। हर इच्छा पूरी हो जाए यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों खुशी वहाँ नहीं रहती जहाँ सब कुछ मिल जाता है, खुशी वहाँ रहती है जहाँ जो मिला उसकी कदर की जाए। तो दोस्तों यह थी हमारे कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें। आज आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उससे मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको अवश्य अवगत करवाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर के साथ में।

हम सपनों की उड़ान में, जैसा कि इससे पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे थे कि पर्याप्त जो शब्द है उसका क्या महत्व है और क्या कभी हमने हमारे जीवन में इस शब्द को अपनाया है, यही एक छोटा सा अभ्यास हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज रात सोने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि आज मुझे ऐसी कौन सी 3 चीजें मिली जिसके लिए मैं आभारी हूँ। शायद एक स्वस्थ शरीर, परिवार का साथ, 2 वक्त का भोजन, एक दोस्त की मुस्कान या किसी अजनबी की मदद। धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं दोस्तों, बल्कि यकीन मानिए समृद्धि देखना सीख जाएगा। जी हाँ, जीवन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पाना नहीं, बल्कि जो पाया है उसे समझना, उसका सम्मान करना और उसके साथ सार्थक जीवन जीना भी है। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन दोस्तों इस यात्रा में अपने वर्तमान को मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति हर पड़ाव पर रुककर धन्यवाद देना जानता है वही अगले सफर की ताकत भी जुटा पाता है। जी हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं है दोस्तों जो तिजोरी में रखी हो, बल्कि वह है जो मन को चैन देती हो। जब हम और की जगह कभी कभी पर्याप्त कहना सीख जाते हैं, तब जीवन दौड़ नहीं एक सुंदर यात्रा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से केवल अधिक पाने की नहीं, बल्कि जो मिला है उसे पूरे मन से जीने का संकल्प लें, क्योंकि संतोष मंजिल नहीं रुकता बल्कि सफर को अर्थ देता है। जी हाँ, कहना चाहूंगी साथियों कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह है कि जो हमारे पास है क्या हम उसे पूरे मन से जी पा रहे हैं। अक्सर हम अपनी खुशियों को भविष्य की किसी तारीख पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वह हासिल हो जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब और पैसा होगा तब जीवन आसान होगा। लेकिन सच तो यह है कि इच्छाओं की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसका स्थान ले लेती है। यदि मन को संतोष का अभ्यास नहीं सिखाया गया तो अभाव की भावना कभी समाप्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्त, यह भी समझना जरूरी है कि पर्याप्त कहना सपनों का अंत नहीं है, बल्कि लालच की सीमा तय करना है। यह हमें सिखाता है श्रोता साथियों कि हम अपनी मेहनत जारी रखें, लेकिन उसी के साथ अपनी खुशी को केवल भविष्य के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल अगले पड़ाव की चिंता करता है वह वर्तमान के सुंदर क्षणों को जी ही नहीं पाता, और जो वर्तमान को खो देता है साथियों, वह भविष्य में भी संतोष नहीं पा सकता। आज समाज में प्रतिस्पर्धा जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, ये हम सभी जानते हैं। लोग अपनी तुलना केवल अपने आसपास के लोगों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से करने लगे हैं। ऐसे माहौल में पर्याप्त कहना एक साहसिक निर्णय है। यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे संतुलन, हमारी कृतज्ञता से भी बनती है। जीवन की वास्तविक समृद्धि वही है जहाँ महत्वाकांक्षा और संतोष दोनों साथ साथ चलें। हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि हर नई वस्तु खुशी की गारंटी नहीं होती। उन्हें यह भी समझाना होगा कि सबसे बड़ा सुख नए सामान में नहीं बल्कि नए अनुभव, परिवार के साथ बिताए समय में, सच्चे रिश्ते में और अपने मन की शांति में छिपा होता है। क्योंकि यदि अगली पीढ़ी केवल और चाहिए कि सोच लेकर बड़ी होगी तो उसके पास सुविधाएं तो बहुत होंगी, लेकिन संतोष बहुत कम होगा। इसलिए श्रोता साथियों, हम अपने जीवन में एक नई आदत जोड़ें। जब भी कोई नई उपलब्धि मिले, अगले लक्ष्य की ओर दौड़ने से पहले कुछ पल रुकें, ये सफर को याद रखें, उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारा साथ दिया, खुद की मेहनत की सराहना करें, और यह ठहराव हमें पीछे नहीं ले जाएगा बल्कि आगे बढ़ने की नई शक्ति देगा। इसलिए कह सकते हैं कि इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, लेकिन संतोष जीवन को गहराई देता है। जिस दिन श्रोता साथियों हम केवल यह गिनना छोड़ देंगे कि हमारे पास क्या नहीं है और ये देखना शुरू कर देंगे कि हमारे पास कितना कुछ है, उसी दिन जीवन का अर्थ बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आगे बढ़िए, अपने सपने देखिए, मेहनत कीजिए, नई ऊंचाइयां छुइए, लेकिन अपनी मुस्कान, अपना सुकून, अपने रिश्ते उस दौड़ की कीमत पर कभी मत खोइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता अधिक इकट्ठा कर लेना नहीं बल्कि इतना समझ लेना है कि कब रुककर पूरे दिल से कहा जाए कि आज मेरे पास इतना है कि मैं एक पल के लिए ईश्वर, जीवन
और अपने प्रयासों का धन्यवाद कर सकूं। यही पर्याप्त का वास्तविक अर्थ है और यही एक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन की सबसे सुंदर पहचान भी है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। मैं खेत हमारे बीज बोया वो पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमा होते मारा अधिकार किन नती सूरी जन्म तक की सत्तार है कानून ने आवाज मानी है ना पन्ना पुटे तेरे हक को ले सके ना रिवाज और सच में बदले सके बाप दादा ने जमीन सूरी ने अधिकार सूरी ने हक इन्हें पहचान वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज 1 अगस्त का दिन है और जैसा कि वागड़ रेडियो की स्थापना भी 1 अगस्त 2017 को हुई थी।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ये हमारे लिए, हमारे जो समुदाय साथी हैं, हमारे जो सभी श्रोता साथी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
0: जी जी,
1: तो आप सभी को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम में हमारी बातें भी इस विषय पर रहेंगी कि वागड़ रेडियो की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व है। लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: उठे।
1: साथियों, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से गीत संगीत के साथ में हम आपको हमेशा मनोरंजन तो करवाते ही रहते हैं, और आज हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है। तो आज कशिश कार्यक्रम के माध्यम से माननीय जयश्री जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वागधरा में वागड़ रेडियो की स्थापना की है। तो सबसे पहले हम उन्हीं से जान लेते हैं कि इस रेडियो की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है, और श्रोता साथियों को वो कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। सर नमस्कार।
2: नमस्कार। वागड़ रेडियो टीम को 9वें स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, श्रोता साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और निश्चित ही ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और अंजलि, जैसे आपने पूछा उद्देश्य की बात की, तो चूंकि मैं निरंतर रेडियो का एक श्रोता रहा था, और किसान होने के साथ जब रेडियो सुनता था तो मन में जिज्ञासा होती थी कि हम हमारी बात कैसे रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और सामुदायिक रेडियो का महत्व, सामुदायिक रेडियो के बारे में तब जानकारी नहीं थी, और हमेशा मन में होता था कि जब समुदाय अपनी बात खुद रखने लग जाए या समुदाय की बातें उन्हें सुनने मिल जाए, तो वो एक सबसे बड़ा मंच है जो हमारी संवाद का एक माध्यम बन पाए।
1: जी जी।
2: इस उद्देश्य से वागड़ रेडियो की स्थापना की गई थी, और इसकी शुरुआत भले ही हमारी 2017 में हुई हो, परंतु उसकी तैयारी के लिए हमने वागधारा ने 2009 से प्रयास शुरू किए थे, और तब जाकर के 2017 में हम उसे स्थापित कर पाए और शुरू कर पाए थे।
1: बिल्कुल। तो सर, कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो जीवन शैली बदल रही है, हम देख रहे हैं कि दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है, इसमें वो किस तरीके से खुद को, अपने आप को और अपने देश के प्रति जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको समझें और जागरूक रहें।
2: तो अंजलि, आपके दो अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आप आपके श्रोताओं से बात करना चाहेंगे तो वागड़ रेडियो के लिए, पहला तो मैं चूंकि वागड़ रेडियो का मैं भी हिस्सा हूं, तो अनुरोध करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, पूरे अंचल से आग्रह करना चाहूंगा कि वो अधिक से अधिक वागड़ रेडियो से जुड़ें, सुने, अपनी बात रखें। और वागड़ रेडियो टीम से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो श्रोता केवल मात्र श्रोता नहीं है, वो वक्ता भी है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि जो वागधारा की हमारी सिद्धांत है, या वागधारा जिसमें विश्वास रखती है संवाद और आपसी विश्वास की बातचीत में, वो वागड़ रेडियो पर भी हो।
1: बिल्कुल।
2: और यही आपने जो कहा कि बदलती जीवन शैली में आने वाली पीढ़ी हो या हमारी अनुभव वाली पीढ़ी हो, उनका संवाद महत्वपूर्ण है, और खुश होना, मानसिक स्वास्थ्य आज की तारीख में, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
2: अगर हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कितने भी संसाधन जुटा लें, हम कितने भी शारीरिक सौष्ठव वाले हो जाएं, कितनी भी सुंदरता हो, पर अगर हमारी मानसिक सुंदरता नहीं है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो हम हमारे स्वयं के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए और प्रकृति के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, हम वो खुशहाली नहीं ले पाएंगे।
1: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़े और हमारे श्रोता साथियों को आपने बहुत ही प्रेरणादायक संदेश दिया।
2: थैंक यू सो मच, और पुनः वागड़ रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष, गर्व और आत्मीयता का अवसर है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वागड़ रेडियो का स्थापना दिवस, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2017 से हुई थी। श्रोता साथियों, और जैसा कि गीत से पहले माननीय जयेश जी जोशी जी सर भी जुड़े हुए थे, और उनके माध्यम से भी अंजलि जी हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए थे कि वागड़ रेडियो को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, और उनके बहुत अच्छे संदेश से भी हम हमारे श्रोता साथियों को रूबरू करवा पाए थे।
1: बिल्कुल,
0: यही हमारे दोस्तों को हम ये बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यह केवल एक रेडियो स्टेशन की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि उस विश्वास, संवाद और जनसेवा के सफर का उत्सव है, जिसने वर्षों से वागड़ अंचल के लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। अंजलि जी, वागड़ की पावन धरती अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, आदिवासी विरासत, लोकगीतों, मेलों, त्योहारों और सामाजिक मूल्यों के लिए पूरे राजस्थान में विशिष्ट पहचान रखती है।
1: बिल्कुल,
0: और इसी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने और जन जन तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से ही आज के दिन को वागड़ रेडियो का शुभारंभ हुआ था।
1: बिल्कुल कशिश, आज का दिन हम सभी के लिए गर्व, खुशी और आत्मीयता का दिन है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम मना रहे हैं वागड़ रेडियो की स्थापना का विशेष अवसर। श्रोता साथियों, यह केवल एक संस्थान की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस विश्वास, सहभागिता और जन सरोकार की यात्रा का उत्सव है, जिसने वर्षों से वागड़ अंचल के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा है।
0: जी।
1: वागड़ रेडियो ने यह सिद्ध किया है श्रोता साथियों कि जब समाज अपनी बात स्वयं कहता है, तो बदलाव की आवाज सबसे प्रभावशाली बन जाती है। रेडियो को हमेशा से सबसे भरोसेमंद माध्यम माना गया है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब रेडियो समुदाय का हो, समुदाय के लोगों द्वारा संचालित हो और समुदाय की भाषा में बात करे, तब उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यही पहचान है वागड़ रेडियो की। इसने केवल समाचार या मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझना, उनके अनुभवों को मंच दिया और उनके समाधान खोजने की दिशा में निरंतर प्रयास भी किए।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथियों आपको बताना चाहेंगे कि स्थापना के समय जो सपना दिखा गया था, वह केवल कार्यक्रम प्रसारित करने का नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला एक ऐसा मंच तैयार करने का था, जहाँ किसान हो, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर हमारे बुजुर्ग कलाकार हो या आम नागरिक हो, वे सभी अपनी बात कह सके और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके। श्रोता साथियों, आज ये सपना एक सशक्त जन माध्यम के रूप में साकार दिखाई देता है। हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में वागड़ रेडियो ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, जल संरक्षण और कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार, खेल, साहित्य और ऐसे कई अनेक विषयों पर सार्थक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं।
1: बिल्कुल कशिश,
0: इन कार्यक्रमों ने दोस्तों लोगों को जागरूक भी किया है, नई सोच भी दी है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अंजलि जी,
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि वागड़ रेडियो का क्या उद्देश्य है स्थापना का, किस तरीके से वागड़ रेडियो के रेडियो अभी के समय में समुदाय साथियों के लिए जन सरोकार के तौर पर कार्य कर रहा है,
0: जी जी,
1: ये बातें कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी। और लेकिन जैसा कि आज उत्सव का दिन है, तो क्यों न कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ हम उत्सव करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए सुनते हैं श्रोता साथियों यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वागड़ रेडियो की स्थापना के दिवस को लेकर ढेर सारी बातें जान रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, वागड़ क्षेत्र अपनी समृद्धि, आदिवासी संस्कृति, लोक परंपराओं, लोकगीत, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक विविधताओं के लिए जाना जाता है।
1: जी जी,
0: बदलते समय में जहाँ कई लोक परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है, वहीं वागड़ रेडियो ने उन्हें नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। लोकगीत, लोक कथाएं, पारंपरिक ज्ञान, खेती किसानी की पुरानी विधियां, त्योहारों की विशेषताएं और स्थानीय बोली, इन सभी को रेडियो ने सहेजने और आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं।
1: बिल्कुल,
0: वागड़ रेडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ कार्यक्रम केवल विशेषज्ञ नहीं बनाते, बल्कि गाँव का किसान, गृहिणी, छात्र, शिक्षक, युवा, बुजुर्ग और लोक कलाकार भी अपनी बात रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि यहाँ प्रसारित होने वाली हर आवाज लोगों को अपनी लगती है। जब किसी किसान की सफलता की कहानी सुनाई जाती है तो दूसरे किसानों को भी नई प्रेरणा मिलती है। जब किसी महिला की उपलब्धि साझा होती है कशिश, तो उन महिलाओं में भी आत्मविश्वास जगता है। जब बच्चों की प्रतिभा को मंच मिलता है तो पूरे समाज को उनकी क्षमता पर गर्व होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। साथी श्रोता साथियों, वागड़ रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसकी सहज पहुंच और आत्मीयता बड़ी है। जैसे कि दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए भी ये जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी जैसे कठिन समय और सामाजिक चुनौतियों के दौरान भी वागड़ रेडियो ने समय पर सही जानकारी पहुंचाकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। अंजलि जी, आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम उन सभी संस्थापकों, कर्मचारियों और कार्यक्रम निर्माताओं, कलाकारों, सबसे बढ़कर अपने सम्मानित श्रोता साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: जिनके सहयोग, विश्वास और स्नेह ने वागड़ रेडियो को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।
0: जी हाँ कशिश, स्वच्छता के क्षेत्र में भी वागड़ रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, मौसमी बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली जैसे विषयों पर सरल भाषा में जानकारी देकर हम लोगों को जागरूक करते हैं। कई बार ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। और जैसा कि आज हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, तो इसको लेकर भी आज कार्यक्रम सच्चा बचपन के माध्यम से हमने विषय विशेषज्ञों को जोड़ा था और जाना था कि किस तरीके से माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही हमें पिलाना है। इसके क्या फायदे होते हैं, न पिलाने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, सभी जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है उसके निवारण को लेकर भी हमने जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे उनसे बातचीत की और इससे लोग जागरूक भी हुए होंगे, हम ये आशा करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि रेडियो केवल समाचार और मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, बल्कि ये समाज और लोगों के बीच विश्वास का एक सशक्त सेतु भी होता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, वागड़ रेडियो ने अपने प्रसारण के माध्यम से स्थानीय भाषा, बोली और संस्कृति को सम्मान देने का कार्य किया है। आज जब आधुनिक संचार माध्यम तेजी से बदल रहे हैं, तब भी रेडियो की सरलता, विश्वसनीयता और सहज उपलब्धता उसे विशेष बना रही है।
0: जी जी,
1: वागड़ अंचल की पहचान उसकी विविध सांस्कृतिक परंपराओं, आदिवासी जीवन शैली, लोक देवताओं, लोक कथाओं और लोक संगीत से है। अंजलि जी, इन अमूल्य धरोहरों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में हमारी वागड़ रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, स्थानीय कलाकारों की आवाज को पहचान दिलाना और विलुप्त होती लोक विधाओं को मंच प्रदान करना किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास की दिशा में बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं। यही हमारे जो समुदाय साथी हैं उनकी महिलाओं ने बहुत ही प्यारा सा वागड़ी गीत प्रस्तुत किया है, तो दोनों हमारे श्रोता साथियों को वही गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए सुनते हैं दोस्तों इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत रहा और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, वागड़ रेडियो के स्थापना दिवस को लेकर गीत से पहले भी हमारी बातें चली रही थी अंजलि जी, इसी बीच हमारे साथियों को हम बताना चाहेंगे कि वागड़ रेडियो ने समाज में जन भागीदारी की भावना को भी मजबूत किया है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जब किसी गांव की उपलब्धि, किसी विद्यार्थी की सफलता, किसी किसान के नवाचार या किसी महिला स्वयं सहायता समूह की प्रेरक कहानी प्रसारित होती है तो वह केवल एक समाचार नहीं रहती,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। इससे अंजलि जी, लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सकारात्मक परिवर्तन की भावना भी विकसित होती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि वागड़ रेडियो ने समय समय पर पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ, स्वच्छता पौधारोपण, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, मतदाता जागरूकता, बालिका शिक्षा, सामाजिक समरसता जैसे कई विषयों पर जन जागरूकता अभियान चलाकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। साथियों, ऐसे कार्यक्रमों ने लोगों को केवल जानकारी ही नहीं दी बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाया है।
1: जी हाँ, कशिश समुदाय की समस्या को सामने लाना, उनके समाधान की दिशा में संवाद स्थापित करना भी वागड़ रेडियो की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
0: जी जी,
1: जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, बाल विवाह, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, ग्राम सभा की भूमिका और सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे विषय पर लगातार कार्यक्रम प्रसारित कर समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है।
0: बिल्कुल,
1: आज जब डिजिटल माध्यम तेजी से बढ़ रहे हैं तब भी रेडियो की आत्मीयता और विश्वसनीयता बनी हुई है।
0: जी जी,
1: रेडियो केवल श्रोता साथियों सूचना नहीं देता बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। खेत में काम करते किसान, घर का काम करती महिलाएं, स्कूल जाने वाले बच्चे और गांव के बुजुर्ग, हर किसी के जीवन में रेडियो की अपनी अलग जगह है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि वागड़ रेडियो आज भी लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। स्थापना दिवस हमें केवल अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर नहीं देता श्रोता साथियों, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है।
0: बिल्कुल,
1: बदलते समय के साथ हमें नए विषयों, नई तकनीकों और युवाओं की नई सोच को भी अपने कार्यक्रमों से जोड़ना होगा, साथ ही अपनी संस्कृति, भाषा और सामाजिक मूल्यों को भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाना होगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देख रहे हैं कि डिजिटल युग में भी रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। आज रेडियो, FM, मोबाइल ऐप, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आधुनिक माध्यमों के माध्यम से जुड़कर पहले से ही अधिक व्यापक श्रोताओं तक पहुंच रहा है। साथियों, इससे स्थानीय विषयों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की नई संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। किसी भी रेडियो की सबसे बड़ी शक्ति उसके श्रोता साथी होते हैं अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: श्रोताओं का विश्वास, सुझाव और सहभागिता ही किसी प्रसारण संस्था की वास्तविक पूंजी होती है। दोस्तों, वागड़ रेडियो की सफलता भी उनके लाखों श्रोताओं के प्रेम, सहयोग और विश्वास का परिणाम है। यही संबंध इसे केवल एक प्रसारण केंद्र नहीं दोस्तों, बल्कि वागड़ रेडियो का अभिन्न सदस्य बनाता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी संकल्प ले सकते हैं कि वागड़ रेडियो को केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि
0: जी
1: उसके साथ मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव की इस यात्रा में मजबूत कदम बढ़ाएंगे।
0: जी हाँ,
1: हम अपनी स्थानीय भाषा, संस्कृति, परंपराओं, लोक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सहयोग देंगे, अपने अनुभव, अपनी कहानियां और अपने विचार साझा करेंगे ताकि यह मंच हमेशा समुदाय की सच्ची आवाज बना रहे।
0: बिल्कुल,
1: वागड़ रेडियो केवल एक प्रसारण केंद्र नहीं बल्कि विश्वास, संवाद, सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन का ऐसा सेतु है जिसने लोगों को जोड़ा है, जागरूक किया है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। स्थापना दिवस पर वागड़ रेडियो से जुड़े सभी श्रोताओं, सहयोगियों, स्वयं सेवकों, कार्यक्रम निर्माताओं और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर इस आवाज को और बुलंद बनाएं ताकि आने वाले वर्षों में भी वागड़ रेडियो हर घर, हर दिल, हर गांव की पहचान बना रहे।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही हैं, ये बातें महत्वपूर्ण आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों वागर रेडियो स्थापना दिवस को लेकर हमारी गीत से पहले भी बातें चल रही थी और हमने आपसे कहा था कि हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा श्रोता साथियों कि ये जो वागर रेडियो है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे श्रोता साथियों को भी हम ये विश्वास दिलाते हैं अंजलि जी कि वागर रेडियो के जो प्रसारण कार्यक्रम है और जो जिम्मेदारियां हैं वो हम भलीभांति आगे भी निभाते रहेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, स्थापना दिवस केवल एक तिथि का उत्सव नहीं है बल्कि अनगिनत आवाजों, सपनों और प्रयासों का सम्मान है जिन्होंने वागर रेडियो को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
0: जी हाँ।
1: यह मंच श्रोता साथियों हमें याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उनमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो और हर आवाज को सम्मान मिले।
0: बिल्कुल।
1: समाज में परिवर्तन किसी एक व्यक्ति या संस्था से नहीं आता बल्कि सामूहिक सोच, सहयोग और निरंतर संवाद से आता है।
0: जी हाँ।
1: वागर रेडियो ने इसी भावना को वर्षों से जीवित रखा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस विरासत को केवल सुनने तक सीमित न रखें

0: बल्कि उसके सक्रिय सहभागी बने। यदि हमारे गांव में कोई अच्छी पहल हो, कोई प्रेरणादायक कहानी हो, कोई लोक कला, लोकगीत, पारंपरिक ज्ञान हो, तो उसे इस मंच पर आप अवश्य साझा करें और आप अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने का आत्मविश्वास मिले, किसानों को अपने नवाचार बताने का मंच मिले और बच्चों को अपने सपनों को अभिव्यक्त करने का अवसर भी मिले।
1: बिल्कुल,
0: यही एक सशक्त सामुदायिक रेडियो की पहचान है। श्रोता साथियों, आने वाला कल नई चुनौतियों और नए अवसरों का है। तकनीक जो है वो बदल रही है, लोगों की जीवन शैली बदल रही है और संवाद के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में वागड़ रेडियो की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम सभी जो लोग हैं वो आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए समाज को सही दिशा देने का कार्य करें।
1: बिल्कुल,
0: हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी लोक विरासत और हमारे सामुदायिक जो सामाजिक मूल्य है वो आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचे, यही इस स्थापना दिवस का सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए। श्रोता साथियों, इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम केवल श्रोता नहीं बल्कि परिवर्तन के सहभागी बने, अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। सकारात्मक सोच, आपसे सहयोग, सामाजिक समरसता, जनहित की भावना को आगे बढ़ाते हुए वागड़ रेडियो की इस यात्रा को और अधिक सशक्त बनाएंगे। स्थापना दिवस की यह बेला हम सभी के लिए नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारी का संदेश लेकर आती है। वागड़ रेडियो की आवाज हमेशा जन जन तक पहुंचे, हर दिल में विश्वास जगाए, हर घर में ज्ञान का प्रकाश फैलाए और वागड़ अंचल की पहचान को पूरे देश में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। वागड़ रेडियो परिवार को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और हमारे श्रोता साथियों को हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे वागड़ रेडियो से जुड़े रहें, आप अपनी आवाज को हमारे रेडियो के माध्यम से मंच दें, साथ ही हम जो भी कार्यक्रम वागड़ रेडियो के माध्यम से चलाते हैं उसमें कोई त्रुटि हो, कोई बदलाव हमें करना हो तो उसके लिए आप राय सुझाव हमें हमारे पते पर अवश्य भिजवाएं। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उसके अंत में पता भी बताते हैं, ईमेल आईडी बताते हैं, फोन नंबर बताते हैं।
1: जी जी।
0: आप उसके जरिए जुड़कर हमें अपने राय सुझाव अवश्य भेजिए ताकि परिवर्तन की दिशा में हम सभी मिलकर आगे कदम बढ़ा सकें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्थापना दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी संस्था की सफलता केवल उसके भवन, उपकरण या तकनीक से नहीं मापी जाती है, बल्कि उससे मापी जाती है कि उसे समाज में, जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यदि किसी किसान को नई खेती की प्रेरणा मिली, किसी विद्यार्थी को सही दिशा मिली या किसी कलाकार को मंच मिला या किसी परिवार तक आवश्यक जानकारी पहुंची अंजलि जी, तो यही वागड़ रेडियो की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
0: जी जी।
1: आज का यह अवसर उन सभी अनाम व्यक्तियों को भी, श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि नमन करता है जो पर्दे के पीछे रहकर भी प्रसारण को सफल बनाते हैं। आइए श्रोता साथियों, स्थापना दिवस पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि वागड़ रेडियो आने वाले वर्षों में भी सत्य, संवेदनशीलता, संस्कृति और समाज सेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता रहेगा और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी पहचान होगी। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में रेडियो की स्थापना दिवस को लेकर हमने जो भी आपसे बातचीत की है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते ही हमारे इस नंबर पर, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भीड़ शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है हमराज। गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू और बीपी कुलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सनावत सिंह, मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिफ, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद जोशी, श्रीमती गिरिजा जी राठौड़, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वेदई जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती जी केवट और बस्तर से जुड़ रही हैं पूनम नायडू जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजुकिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोहका भलाई सी। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, गीत के बोल ही रूठ जा रात ठहर जा रे चंदा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आयुष जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका जी जंगेल और आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिदानजी खुराना। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चनाताई गोड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभाजी गोड़ाने और महेश राम टेके जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, नमन, गुरशब्द, गुरकिरत सिंह राहुल। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, रुक जा रे रात, ठहर जा चंदा। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बद्रावती से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अब्दुल लोहीवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है, मुंगी से बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है मराठवाड़ा से समित मशरूम, साइनासन, आगसानाजिया, आफिया और इब्राहिम जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजाद अबुस्सम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना, गीत के बोल ही पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णव जी नामदेव और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। डुमराव सिंह, वली उल्ला अंसारी, इस्मानाज अंसारी, शबनम बानो जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं। राज एडी अंसारी, फातमा नाज जी छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं। सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं। दिल्ली से राजा खोरवाल, रानी खोरवाल और प्रकाश जी खोरवाल। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमा

इश्क के इस गीत को गीत की बोल ही पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गुड़िया चले। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे रघुवीर नगर दिल्ली से, जफर मोहम्मद शेख, अफजल जी, फलक जी और अलिजबा जी इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं। वासिम से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा जी सुरुषी। इस गीत के अनुरोध करता है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू इसे भी जुड़ना चाह रहे। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से जुड़ रही हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, सृष्टि बन्ने, आरिष शोरिया, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गुरिया चले। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत यूपी से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल ही ये धरती चांद सितारे। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलेज डिकिस्टो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरानी इरशाद, नवेदी इरशाद, अजरात अबू समझी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करते हैं गंजडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। चूरू छत्तीसगढ़ जीरा कोरबा से जुड़ रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला सिंह ठाकुर और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं मानुषानु बब्बन मीनू काना हरिप्रिया जी ठाकुर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही धरती चांद सितारे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश डोमेन, शालिनी जी डोमेन, लाहौरा से जुड़ रहे हैं डोली नेहा और प्रभा नेहा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल जी उमा। जेल रोड खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना कुमारी, राकेश ताई। डुमराव से जुड़ना चाह रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी जी यादव और नरेंद्र जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतेश संगई, ब्रजेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बक्सर सर से फातिमा राज, बेबी अंसारी और डब्लू जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। जैसा कि श्रोता साथियों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9460051234। तो जैसा कि साथियों, आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप आगे इसे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो साथियों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, हमारी अगली फरमाइश का गीत है बागपत यूपी से आया है। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं बागपत यूपी से, आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। इसी बीच पाड़ीकला से भूमिका कुंवर जी, नरेश चौहान, मनोज कुमार मीणा जी, मेघराण मीणा जी। धनपुरा से जुड़ना चाह रहे सुरेश विक्रम सिंह, लक्ष्मण चौधरी जी। भिलवाड़ा से जुड़ रहे हैं चंद्रपाल जी, राय प्रसन्न, महावीर जी, देवीलाल, राजा राम और मनसाराम जी, संदीप जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, ओजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उदयपुर से सत्येंद्र, नरेश चौहान, जयवर्धन मनैरिया, सत्यम मीणा जी, शिवम, संजीव, कमलेश, रोहित, वजेंद्र, अरुण, गणेश लाल जी, जसवंत जी। घाटोल से जुड़ रहे हैं अखिलेश जी, हेमराज मीणा जी और चरण सिंह श्याम प्रसाद जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था राजा हिंदुस्तानी फिल्म का, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं साथियों अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी फिल्म का नाम है सलामी। गीत के बोल हैं चेहरा क्या देखते हो। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में सहारनपुर से, जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। इसी बीच पाड़ी कला से हैं उष्मा कुंवर, हेमंत टेलर जी, आशाराम रमेश लाल जी। गांटोल से हैं प्यारे लाल जी, श्याम लाल जी, घन श्याम जी, राधेलाल, लालाराम जी। और भी श्रोता साथी डावरा खुर्द से जुड़ना चाह रहे हैं अरविंद जी, राहुल शर्मा जी, जसवंत कुमार, गमंडी लाल जी, मेदराज मीणा और कपिल शर्मा जी। इसी बीच श्रोता साथी उदयपुर से जुड़ रहे जशवर्धन जी, सत्यम मीणा जी, शिवम, संजीव, कमलेश, रोहित शर्मा जी, वजेंद्र कुमार जी, अरुण धोमड़े, अशोक धोमड़े जी, गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश जी, हेमराज मीणा जी और चरण सिंह जी और श्याम प्रसाद जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मड़ियार जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, इरमान अरशाद, अरमान इसरा, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, मोहम्मद आफिया अंसारी, केफ अंसारी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चेहरा क्या देखते हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, ये फरमाइश हमारे बीच आई है रायबरेली से। फिल्म का नाम है श्रोता साथी है जो जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, फिल्म का नाम है प्यार। गीत के बोल है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे सत्येंद्र, नरेश चौहान, जशवर्धन मीनारिया, सत्यम मीणा जी, शिवम, संजीव, कमलेश, रोहित, वजेंद्र, अरुण, गणेश लाल जी, जसवंत, संजय और अखिलेश, हेमराज मीणा जी, चरण सिंह, श्याम प्रसाद जी, मड़ियाव जौनपुर से इरशाद अवंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, अजरा तबस्सुम जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंजुटवाड़ा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा आमजेव जी। जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानु शानु, बब्बन मनु, कहानी और हरिप्रिया जी। इसी बीच हमारे साथी बनारस से भी जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी, गणेश लाल जी, जसवंत, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा जी, सत्येंद्र, नरेश कुमार जी, शिवम, संजीव और रोहित जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। गीत के बोल हैं, हम लाख छुपाए प्यार मगर। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू जी और आशा भोसले जी ने। ये फरमाइश हमारे बीच आई है गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से। मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान नाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी साथियों, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, सुभाष मिगलानी, बब्बू डब्बू जी, बबीता मिगलानी जी, इसी बीच हमारे साथी हैं जो और भी जुड़ रहे हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खट्टक, प्रमिला खट्टक, सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, डोली मिन्हास और प्रभा मिन्हास। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम लाख छुपाए प्यार मगर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये फरमाइश आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है टशन, गीत के बोल हैं फलक तक चल साथ मेरे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे दीपक खट्टक, प्रमिला खट्टक, सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र सहारनपुर से जुड़ रहे हैं, बालोद से हैं डोली मिन्हास और प्रभा मिन्हास जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रायगढ़ बिहार से उमा राज, शफी उमा, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल उमा जी। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना राकेश ताई, डुमराव से लालू बाबा दीवाना, दिव्या भारती, चंद्रनगर सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र यादव और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। श्रोता साथी, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश सिंगे, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। बक्सर से जुड़ना चाह रहे फातिमा राज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं फलक तक चल साथ मेरे।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बक्सर शहर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों विवाह। गीत के बोल हैं, मिलन अभी आधा अधूरा है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं पुन्ना दक्षिण मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अनुरा चेतन, सुलोचना भगत, बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशव खुराना, रिधान खुराना जी, अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना दाई गुणाने, मैं प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी, प्रतिभा गुणाने, महेश रोमटके जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी जी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधुनूतन, शिशपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका नमन, गुरकीरत, सिमरन, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मुकाम बरदावती से हैं अब्दुल लोहेवाला, साजिदा शेख, राहिल शेख, अब्दुल्ला शेख। मुंगी से जुड़ना चाह रहे हैं बाबा साहेब कंगणक्कर, सागरबाई कंगणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी कंगणक्कर, परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। कश्मीर से है फिराजा, मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। और भी दोस्त मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत जी, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले जी। जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, अजरा तबस्सुम जी, नवेद इरशाद जी, मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौनी अंसारी, आफिया परवीन जी, रायपुर बनारस से हैं ये। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मिलन अभी आधा अधूरा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये फरमाइश हमारे बीच आई है कश्मीर से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं सोनी सोनी अखियों वाली। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में साथियों, कश्मीर से मिराजुद्दीन नजमुद्दीन क्वासिरुद्दीन और भी दोस्त इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। सही न्यूज सैयद नुमान, तस्वीर मसरत जी और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, जुड़ रहे हैं मराठवाड़ा से हैं गिरीश देव पांडे, अजबिक दीक्ष पांडे, जौनपुर से इशाद अवंसारी, कामरा निर्शाद अरमान, ईशा अजरा तबस्सुम जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, आनंद राठौर, गिरजा राठौर, सोहन सिंह, अर्चना जोशी जी, जोकेश जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, विदेही जोशी, मध्य प्रदेश से गफर डवर जी, मध्य प्रदेश से और भी श्रोता साथी हैं जयवंती केवट जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त हमारे सनावत से हैं मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद इसाक, बब्बू डब्बू जी, मोहम्मद इसाक जी और भी श्रोता साथी हैं बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर करते, संगीता गटे, साक्षीवास अग्रवाल, नंजन ढोल, बीपी कुलथे जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सोनी सोनी अखियों वाली। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए साथियों आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागर रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों, राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे, और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागर रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: व्रत के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनू, अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी, सचिव ने पंचायत, आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथे मनु में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लगाड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरो अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मित्रता के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले जीवन नहीं जी सकते, हमें हर कदम पर किसी न किसी के सहयोग, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: जीवन के बहुत सारे रिश्तों में यदि कोई रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बंधन के और बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है तो वो होता है दोस्ती का रिश्ता। सच्ची दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने समय बिताने का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि एक ऐसा संबंध है जो विश्वास, सम्मान, सहयोग और त्याग की मजबूत नींव पर टिका होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे युवा साथियों से इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में भी गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जो न केवल हमारी मुस्कान का कारण बनता है बल्कि मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है। जी हाँ साथियों, आज का विषय है सच्ची दोस्ती और युवा साथी को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी की युवावस्था जीवन का सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण दौर होता है। यही वह समय है साथियों जब हम अपने भविष्य के सपने देखते हैं, नए फैसले लेते हैं, करियर बनाते हैं और जीवन की नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। जागृति जी, इस सफर में अगर कोई रिश्ता सबसे अधिक हमारा साथ देता है तो वह है सच्ची दोस्ती।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्त केवल वह नहीं होता जिसके साथ हम हंसते हैं बल्कि वह होता है साथियों जो हमारे आंसू बिना कहे समझ ले। इसलिए ये कहा भी गया है कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ न छोड़े।
1: बिल्कुल कशिश, युवावस्था जीवन का वो दौर है जब व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। इसी समय लिए गए निर्णय उसके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में अगर युवाओं को अच्छे मित्र मिल जाए तो उनका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है, वहीं गलत संगत उन्हें लक्ष्य से भटका सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा जाता है कि मित्र चुनना भी जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, सच्ची दोस्ती का अर्थ केवल सुख के समय साथ रहना नहीं है बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा मित्र तो वही होता है जो हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की प्रेरणा दे, जो हमारी सफलता में सबसे अधिक खुश हो और असफलता में सबसे पहले हमारा हौसला बढ़ाए।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, सच्ची दोस्ती में दिखावा नहीं होता बल्कि अपनापन होता है कशिश। इसमें स्वार्थ नहीं होता बल्कि समर्पण होता है और यही कारण है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में सैकड़ों लोगों से हमारी पहचान हो जाती है। हमारी श्रोता साथियों, जो फ्रेंड लिस्ट है वो काफी लंबी हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हर व्यक्ति हमारा सच्चा दोस्त नहीं होता जागृति जी। सच्ची दोस्ती लाइक, कमेंट या फॉलोवर्स की संख्या से नहीं मापी जाती बल्कि विश्वास, सम्मान और ईमानदारी के साथ साथ अपनापन से बनती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि एक सच्चा दोस्त हमारी सफलता पर दिल से खुश होता है और असफलता में हमें संभालता है। दोस्तों, वह आपकी गलतियों पर ताली नहीं बजाता बल्कि सही रास्ता आपको दिखाता है। वह आपकी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसे ताकत बनाने में मदद करता है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि युवाओं के जीवन में कई तरह के दबाव होते हैं जैसे कि पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता का दबाव, परीक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं, भविष्य की योजनाएं और सामाजिक दबाव। ऐसे समय में जागृति जी, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारी बात सुन ले तो हमारा मन हल्का कर दे और सही सलाह हमें दे दे तो आधी परेशानी अपने आप ही हमारे युवा साथियों की कम हो जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि साथियों, युवावस्था में व्यक्ति अनेक अनुभवों से गुजरता है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, पारिवारिक अपेक्षा और सामाजिक दबाव, कई बार ये सारी चीजें युवाओं को तनाव में डाल देती है कशिश। ऐसे समय में एक अच्छा मित्र उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अगर एक सच्चा दोस्त है तो वो कठिन समय में हिम्मत देगा, सही निर्णय लेने में वो हमारी सहायता करेगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा, निराशा से हमें बाहर निकालेगा और सकारात्मक सोच की तरफ हमें विकसित करेगा, हमें अच्छी अच्छी बातें बताएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। जब युवा अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं तो वे नई नई बातें सीखते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम दोस्ती के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ हम कर लें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी मित्रता के महत्व को लेकर, तो साथियों जैसा कि गीत से पहले हमने आपसे बात की थी कि युवा जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है, सच्ची दोस्ती का वास्तविक अर्थ क्या है, यही हम बात करते हैं। अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं?
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, जीवन में हर व्यक्ति मित्र कहलाने योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल मनोरंजन या स्वार्थ के लिए साथ होते हैं श्रोताओं, जबकि कुछ जीवन भर साथ निभाते हैं। अच्छे मित्र की पहचान ये कि वो सत्य बोलता है, गलत कार्यों से रोकता है, मेहनत करने की प्रेरणा देता है, सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता और हर परिस्थिति में वो हमारा साथ देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसके विपरीत हम बताना चाहेंगे हमारे साथियों को कि बुरा मित्र गलत आदतों की ओर हमें जोर देगा, समय और धन की बर्बादी कराएगा, झूठ बोलना सिखाएगा, पढ़ाई और लक्ष्य से दूर करेगा, केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ देगा। युवाओं को मित्र चुनते समय केवल व्यवहार नहीं देखना है श्रोताओं आपको, बल्कि उनके विचार और संस्कार भी देखने होंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा दोस्त नहीं होता। साथियों, सच्ची दोस्ती की कुछ पहचान होती है, जैसे कि वो हमारी सफलता से जलते नहीं है बल्कि खुश होते हैं, हमारे रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं साथियों, और ऐसा दोस्त जो जरूरत पड़ने पर बिना बुलाए साथ आपके खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मित्र श्रोता साथियों जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है, जिन्हें हमें संजो कर रखना होता है। क्योंकि दोस्ती जितनी खूबसूरत होती है जागृति जी, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है।
0: जी हाँ,
1: यदि दोस्त सही हो तो जीवन संवर जाता है, लेकिन यदि मित्र गलत संगत वाला हो तो जीवन की दिशा बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे युवा साथी कई ऐसे हैं जो दोस्तों के दबाव में आकर नशे की आदत, गलत संगति, समय की बर्बादी और कह सकते हैं कि हिंसा और अनुचित गतिविधियों की ओर बढ़ जाते हैं। कई बार वे तो अपनी पहचान भी खो बैठते हैं, क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्त चुनते समय श्रोता साथियों केवल ये मत देखिए कि वह कितना लोकप्रिय है, बल्कि ये देखिए कि उसके साथ रहने से आप बेहतर इंसान बन रहे हैं या नहीं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि विश्वास

0: देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच्ची दोस्ती केवल खुशियां ही नहीं देती बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथी श्रोता साथी, कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: सच्चा दोस्त आपकी कमियों का मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि आपको सुधारने का प्रयास करेगा। दोस्तों, यदि आपका मित्र आपको गलत रास्ते से रोकता है, आपकी आलोचना करता है या आपकी गलती बताता है दोस्तों, तो उससे आपको नाराज होने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार वही सलाह हमें बड़ी गलतियों से बचा सकती है।
0: जी हाँ,
1: आज जागृति जी हम देखते हैं कि अधिकांश बातचीत मोबाइल और सोशल मीडिया पर होती रहती है। ऑनलाइन दोस्त बनाना हमारे युवा साथियों के लिए काफी आसान हो गया है, लेकिन ऐसे में भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है। यानी कि श्रोता साथियों, डिजिटल माध्यम अच्छे हैं लेकिन वास्तविक रिश्तों की जगह नहीं ले सकते वे। किसी मित्र के साथ बैठकर बातचीत करना, उसकी आंखों में देखकर उसकी परेशानी समझना और उसके साथ समय बिताना, ये अनुभव किसी चैट या इमोजी से नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया के साथ साथ वास्तविक रिश्तों को भी समय देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कशिश कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी हमें असफलता मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा मित्र वही है जो असफलता में हमारा आत्मविश्वास लुटाए, गलतियों से हमें सीखने की प्रेरणा दे, निराशा में आशा का दीप जलाए, हमें हार मानने से रोके। ऐसे मित्र जीवन के कठिन राहों को भी आसान बना देते हैं। श्रोताओं, दोस्ती का अर्थ हर बात में साथ देना नहीं होता। अगर मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे रोकना भी सच्ची मित्रता है।
1: जी जी।
0: अगर कोई मित्र नशे में है, हिंसा, झूठ या किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उसे समझाना भी हमारा कर्तव्य है। सच्ची दोस्ती वही है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए, न कि गलत रास्ते पर ले जाए। दोस्ती केवल संबंध नहीं बल्कि जीवन का विद्यालय भी है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। तो आज के युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हम जो युवा हैं वो भारत का भविष्य है। अगर युवा सही मित्र चुनेंगे, अच्छे संस्कार को अपनाएंगे और सकारात्मक सोच विकसित करेंगे तो वे न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे कशिश, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: हमें ऐसे मित्र बनने का प्रयास करना होगा दोस्तों, जो दूसरों को आगे बढ़ाए, निराश लोगों में आशा जगाए और कठिन समय में उनका सहारा बने।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो श्रोता साथियों, अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: सच्ची दोस्ती हमें खुशियाँ देती है, कठिन समय में हिम्मत देती है और गलत रास्तों से बचाती है, साथ ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाती है जागृति जी। ऐसे में हमारे युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसे मित्र बनेंगे जो विश्वास, सम्मान, ईमानदारी और संवेदनशीलता को अपने रिश्तों के नींव बनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों, मजबूत रिश्ते ही मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत समाज का निर्माण करते हैं।
0: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मित्रता के महत्व को लेकर बातचीत कर रहे थे कशिश, कुछ छोटी मोटी बातें जरूर रह गई, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी मित्रता के महत्व को लेकर, तो अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे सुंदर उपहार है।
1: बिल्कुल,
0: धन पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं श्रोताओं, लेकिन एक सच्चा मित्र जीवन भर हमारी सबसे बड़ी ताकत बना रहता है।
1: जी हाँ,
0: युवा अवस्था में बनी अच्छी मित्रता व्यक्ति के चरित्र, सोच और भविष्य को नई दिशा देती है। इसीलिए मित्र चुनते समय बाहरी आकर्षण नहीं बल्कि उसके संस्कार, विचार और व्यवहार को महत्व देना होगा।
1: जी हाँ,
0: हम केवल अच्छे मित्र खोजने का प्रयास न करें बल्कि स्वयं भी ऐसे मित्र बन जाए जिन पर कोई विश्वास कर सके। जब युवाओं की दोस्ती विश्वास, सम्मान और सहयोग, साथ ही सकारात्मक सोच पर आधारित होती है कशिश, तब युवाओं का जीवन सफल, समाज मजबूत और राष्ट्र समृद्ध बनता है। इसलिए याद रखिए, सच्ची दोस्ती केवल रिश्तों की पहचान नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत युवाओं को सही दिशा देती है, उन्हें गिरकर संभलना सिखाती है और उनके सपनों को साकार करने का साहस देती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको हमारे कार्यक्रम का पता हम बताना चाहेंगे।
0: जी हाँ, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि आज 1 अगस्त का दिन है और आज के दिन विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि ये जो सप्ताह है वो माँ के दूध के महत्व, शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और मातृ शिशु पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों आइए सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं और आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज से ही स्तनपान सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है और जो स्तनपान सप्ताह है श्रोता साथियों, वो माँ के दूध के महत्व और मातृ शिशु पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आइए श्रोता साथियों, इस विशेष अवसर पर जानते हैं कि जीवन के शुरुआती दिनों में स्तनपान क्यों जरूरी है। तो इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम से विषय विशेषज्ञ जुड़ने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारे बीच जुड़ रहे हैं श्रीमान वैभव जोशी, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कुपड़ा में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को।
1: सर नमस्कार। सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। तो सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं वैभव जोशी, यहाँ पर मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कुपड़ा में काम कर रहा हूँ।
1: सर, जैसा कि आप स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कुपड़ा में स्थानांतरित हैं, तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, वो क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि परिवार, समाज और जो विशेषकर जो माताएं हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उनमें स्तनपान को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए स्तनपान 6 महीने तक कंटिन्यू करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। तो सर, बच्चे के जन्म के बाद माँ को कितनी देर के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? क्या पहले घंटे की कोई विशेष महत्व है?
2: मेडिकल में कहते हैं कि जितना जल्दी स्तनपान शुरू हो जाए बहुत अच्छा रहता है, और जो शुरू का 1 घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। तो शुरू का 1 घंटा जो है उसको, उसमें अगर हम जितना जल्दी स्तनपान कराएंगे तो बच्चे की रिकवरी, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हमको 1 घंटे के अंदर जो स्तनपान है शुरू करना रहता है, क्योंकि संक्रमण का खतरा इसमें ज्यादा रहता है, इसलिए हमको स्तनपान 1 घंटे के अंदर शुरू करना है।
1: बिल्कुल। लेकिन सर, हम देखते हैं कि कई लोग पीले गाढ़े दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे फेंक देते हैं, तो क्या ये सही है या बच्चे के लिए कितना जरूरी है?
2: जो शुरू में माँ से निकलने वाला जो पहला पीला गाढ़ा दूध है, वो बच्चे के लिए एक अमृत के समान है।
1: जी जी।
2: और कई लोगों में ऐसी अवधारणा है कि ये इससे दूध से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, परंतु ये जो पीला गाढ़ा दूध है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पोषण, सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी गाढ़े दूध में होता है, जो शुरू में अगर बच्चे को मिलता है तो ये एक मकान की बात ही, अगर उसकी नींव मजबूत रही
1: जी जी,
2: तो वो बच्चा का जो आगे का भविष्य है बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम हर महिला को, हर जो भी हमारे संपर्क में आता है, उसको सजेस्ट करते हैं कि शुरू का जो 1 घंटा है उसके अंदर, जो मतलब शुरू के 3 दिन निकलता है ये पीला गाढ़ा दूध, वो बच्चे को पिलाना बहुत आवश्यक।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही क्यों देना चाहिए? इस दौरान पानी, शहद या जन्म खूटी, जो परंपरागत तौर पर अन्य चीजें दी जाती थी, उनसे क्या नुकसान हो सकता है?
2: शुरू के 6 महीने में जो माँ के दूध में पर्याप्त पोषण है और जो पानी की मात्रा है वो बच्चे के लिए सफिशियंट है।
1: बिल्कुल।
2: और बच्चे का जो पाचन है वो उन्हीं चीजों को पचा पाता है। अगर आप ऊपर से कोई जन्म गुटी या जैसे लोगों में है कि शहद चटाएं या उसके हाथ से, तो बच्चे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और बच्चे की पाचन क्षमता खत्म हो जाती है। तो शुरू के 6 महीने, वैसे हम कहते हैं कि जब तक बच्चा दूध पिए तब तक दूध पिलाना चाहिए, परंतु 6 माह तक तो बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए।
1: जी जी, बिल्कुल सर। तो यही मैं जानना चाहूंगी कि माँ के दूध से बच्चे को कौन कौन से पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऐसे गुण मिलते हैं जिससे उसे लाभ होता है?
2: जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जो माँ के दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, उसके एंटीबॉडीज और कई सारे इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन, अवयव और सारे इम्यूनोग्लोबिन अगर बच्चे को मिलते रहेंगे, तो उससे बच्चे का जो संपूर्ण विकास है या सर्वांगीण विकास है वो बहुत अच्छी तरह से होगा, वो कई सारी बीमारियों से बच सकता है।
1: जी सर। तो यही अब मेरा सवाल है आपसे कि स्तनपान कराने से बहुत सी बार माँ को ये लगता है कि उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा, उसका शरीर जो है वो बेढोल हो जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है?
2: ये एक बहुत गलत अवधारणा है। जो महिला, जैसे जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके शरीर के अंगों का विकास होता है या डेवलप होते हैं, जैसे ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, गर्भाशय की साइज बढ़ जाती है, परंतु अगर जो महिला 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसका जो पुनः अपनी पुरानी शेप में आना या जो पुराने अंग है जैसे ब्रेस्ट शायद वापिस शुडोल हो जाना या उसका जो गर्भाशय है जो दूसरे अंग है प्रजनन के अंग है उनका वापिस अपनी पुनः अवस्था में आना ब्रेस्ट फीडिंग से ज्यादा प्रभावी होता है। जबकि अगर कोई महिला है जो बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है तो उसका वापिस शेप में आना उतना मुश्किल हो जाता है। तो अगर महिला बच्चे को कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है 6 माह तक तो वो अपना डिलीवरी से पहले वाला जो शरीर है वो प्राप्त जल्दी कर सकती है।
1: बिल्कुल। और इससे माँ के स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ पहुँचते हैं?
2: महिलाओं में हम देखते हैं अधिकतर जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर उसका खतरा थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है नॉन स्टॉप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो शब्द है उसका मतलब है कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, इसमें एक बूंद पानी भी नहीं आएगा, इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं हमारी भाषा में। तो अगर 6 माह तक बच्चे को माँ सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है तो उससे माँ में एक तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, उसके बाद में ये एक प्रकार से इसको लैम मेथड भी कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि अगर महिला स्तनपान कराती है लगातार तो महिला में किसी प्रकार के ऊपर से कॉन्ट्रासेप्शन लेने की या गर्भ निरोधक दवाई लेने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर वो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो अंडों का उत्सर्जन नहीं होता है, तब तक वो अगली बार प्रेगनेंसी होने की खतरा कम रहता है।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने महिलाओं पर होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में हमें बताया है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि यदि माँ को लगता है कि उसका दूध कम बन रहा है तो उसे क्या करना चाहिए?
2: अगर माँ को लगता है उसका दूध कम बन रहा है तो वैसे उसे कोशिश करनी चाहिए कि दोनों स्तनों से बारी बारी स्तनपान कराए और ज्यादा से ज्यादा दिन में हम कहते हैं कि 10 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए महिला को।
1: बिल्कुल।
2: और ये देखे कि बच्चा स्तनपान करने के बाद में सो रहा है या टॉयलेट पेशाब कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब बच्चा रो रहा है भूख से स्तनपान कराने के बाद भी। वैसे जहां तक मेरा मानना है कि अगर वो लगातार स्तनपान बच्चे को चिपका के रख करके स्तनपान कराती है तो कहीं हद तक ये समस्या समाप्त हो जाएगी, पर उसके बावजूद भी अगर महिला को लगता है कि बच्चा स्तनपान कराने के बाद में रो रहा है या उसका पेशाब नहीं आ रहा है या पेट नहीं भर रहा है तो वो अपने नजदीकी कोई भी उपस्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के CHO या बड़े सेंटर पे जाकर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वगैरह से संपर्क कर सकती है, सलाह ले सकती है।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, यही स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है, कौन सी गलतियों से महिलाओं को बचना चाहिए?
2: स्तनपान कराने का जो सही तरीका उसको हम कहते हैं सीधा समीप और सामने, यानी बच्चा जो है वो एक सीधी लाइन में हो, बच्चे का सिर और बच्चे का जो शरीर है वो एक लाइन में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। उसके बाद में जब महिला बच्चे को स्तनपान कराए तो समीप मतलब उसका जो शरीर है बच्चे को चिपका के रखे, बच्चे का मुंह पूरा खुला होना चाहिए, यानी कि सिर्फ बच्चा है वो सिर्फ निप्पल को चूसे नहीं, निप्पल के आसपास का जो गहरा काला भाग है एरियोला उसको भी सक करे, और दूध पीते हुए बच्चे के जो नासिका छिद्र है वो खुले होने चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे का दूध पीते पीते मर गया, क्योंकि एक तरफ से उसके मुंह के अंदर माँ का निप्पल है और जो नासिका छिद्र है वो भी पैक हो गए, तो बच्चा सांस कैसे लेगा घबराहट की वजह से। तो बच्चा एक तो जागृत अवस्था में हो तभी फीडिंग करानी चाहिए और उसके बाद में शरीर से चिपका रखना चाहिए, और दूध पिलाने के बाद में डकार दिलवाना बहुत जरूरी है वरना पेट में गैस बनने की समस्या ज्यादा रहती है।
1: जी सर। और यही जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, खेत में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चों को स्तनपान कराना कैसे जारी रख सकती हैं?
2: जैसे हमारे एरिया में ऐसी परेशानी आती नहीं है, खास करके जो मेट्रो सिटी है जहाँ वर्किंग वुमन है, अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कम से कम आपको दिन में 10 से 12 बार हर 2-2 घंटे के अंतराल के अंदर फीडिंग करानी है। पर अगर जैसे महिला कामकाजी है तो दूध को आप जो नॉर्मल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे अगर ठंडा है उसमें आप 24 घंटे तक दूध खराब नहीं होता है, तो जो मिल्क सकर करके आता है जिससे मिल्क को महिला मैन्युअल तरीके से ब्रेस्ट को दबा करके अपना मिल्क है वो एक साफ स्टराइल कटोरी के अंदर निकाल के ढक के रख दे, और घर पे कोई भी उसका पिता हो या उसकी दादी हो या कोई भी महिला दूसरी हो, जब भी बच्चा हो चम्मच या कटोरी चम्मच के माध्यम से उस बच्चे को दूध पिलाता रहे, ताकि महिला अगर उसके वर्क प्लेस पे या खेतों में कहीं भी हो तब भी बच्चे का जो स्तनपान का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो।
1: बिल्कुल सर। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं जो हैं उनकी जीवन शैली बदल गई है, इस कारण हम देखते हैं कि नॉर्मल जो डिलीवरी होती थी उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, आजकल सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो इसके बाद जन्म के तुरंत बाद स्तनपान तुरंत शुरू किया जा सकता है?
2: देखो मेडिकल ये कहता है कि जितना जल्दी हो स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, परंतु अगर जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो हम आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है उसके अंदर स्तनपान कराते हैं। पर अगर सीजेरियन के बाद में अगर महिला को अगर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, महिला और बच्चा दोनों सामान्य है, तो भी हम स्तनपान शुरू कर सकते हैं। पर अगर सीजन के 4 घंटे के अंदर तो हमको किसी भी हालत में स्तनपान शुरू करा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, यही परिवार के जो सदस्य हैं जैसे कि दादी, सास और पति, माँ को स्तनपान के दौरान किस तरह से महिला को सहयोग करना चाहिए?
2: एक महिला दूसरी महिला को अच्छा सपोर्ट कर सकती है, तो जो सास है वो उस महिला के दूसरे घर के कामों में मदद करे, ताकि जो महिला है कम से कम 6 माह तक बच्चे को प्रॉपरली ध्यान दे सके।
1: बिल्कुल,
2: जिससे बच्चे के ऊपर उसका अटैचमेंट बढ़े। और जो दूसरी चीजें हैं, जो समाज में फैली हुई धारणाएं हैं कि बच्चे को जन्म कुटी देना है, शहद देना है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव जो महिला है उस पे नहीं बनाया जाए कि नहीं तुझे इसको शहद चटाना ही पड़ेगा या जन्म कुटी पिलानी ही पड़ेगी। उसके अलावा एक हमारी एक टर्म आती है जिसको कहते हैं कंगारू मदर केयर, जिसमें बच्चे की त्वचा और माँ की त्वचा को चिपका के रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे की जो हाइपोथर्मी है यानी कि शरीर का तापमान गिरने से बचाया जा सकता है। तो इसमें हम जो दादी या उसका पिता या कोई भी घर का दूसरा सदस्य, ये इस चीज में महिला की मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल, और सर हम देखते हैं कि समाज में कई सारी ऐसी क्रांतियां हैं स्तनपान को लेकर, तो उसको लेकर क्या सही जानकारी आप समाज तक पहुंचाना चाहेंगे?
2: देखो, कुछ भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति है जो हमने बात करी थी कि पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए, जो अपवित्र होता है, खराब होता है। ये सबसे पहली भ्रांति है जिसको, इसका खंडन यही है कि जो पीला गाढ़ा दूध है जो शुरू के 3 दिन निकलता है, वो पीला गाढ़ा दूध एक अमृत के समान है, जो बच्चे के जन्म से 1 घंटे शुरू होता है और 3 दिन तक हर माँ को बच्चे को पिलाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी चीज जो भ्रांति है कि बच्चे को आप शहद, जन्म बूटी, इस तरह की कोई चीज पिलाएं, ऐसी कोई चीज नहीं पिलानी चाहिए बच्चे को आप, वरना संक्रमण का खतरा, दस्त लगना, ये सारी चीजें हो जाती। तीसरी गलत भ्रांति है कि जो महिलाएं कई बात मान जाती हैं कि चलो ठीक है हम इसको पानी नहीं पिलाएंगे, पर महिला कई बार मेरे पास आती है कि डॉक्टर साहब ये ऐसी बात है कि ये पहला वाला बच्चा तो हमारे सर्दी में हुआ था तो इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ी, पर ये दूसरा तो मई जून में हुआ, इसको पानी नहीं पिलाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली हर में जितने भी, अगर जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनको समझा रहा हूँ कि अगर आप समझे, आप उनको इस तरह समझाएं कि आपके दूध में जितनी पानी की मात्रा है वो इस बच्चे के जितनी जरूरत है उतने लिए पर्याप्त है, उस तरह समझाएं। आप उसको अगर बोलेंगे तेरा दूध पानी है तो वो लड़ने भी हंसते आपसे। इस तरह से आप उसको बोलेंगे आपके दूध में जितनी पानी की मात्रा है वो बच्चे के लिए सफिशियंट है, ऊपर से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल। तो सर आपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। यही अब मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत हो?
2: अगर महिला बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रो रहा है या ठीक से सो नहीं पा रहा है,
1: बिल्कुल,
2: या बच्चा टॉयलेट नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि अगर बच्चा दूध पीने के बाद में टॉयलेट कर रहा है इसका मतलब उसका दूध उसके पेट में जा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी महिला अगर उस बच्चे को दूध पिला नहीं पा रही है और बच्चा टॉयलेट नहीं कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, या महिला में कोई ब्रेस्ट से संबंधित है जैसे कटे हुए या इन्वर्टेड निप्पल है, सोर निप्पल है, एंगोरेज ब्रेस्ट है,
1: बिल्कुल,
2: तो उस कंडीशन में उस महिला को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपने नजदीकी अगर सब सेंटर पे CH हो उससे राय लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, तो यही जो ये हम स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं उसको लेकर समाज, युवा, बच्चे, माँ, सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: ये जो हमने पूरी बात करी उसके जो मुख्य पॉइंट है, सबसे पहली बात जो सबको जाननी चाहिए कि एक तो स्तनपान जो है वो जितना जल्दी हो सके उसको शुरू किया जाए। दूसरी चीज है शुरू के 3 दिन का जो पीला गाढ़ा दूध है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, वो बच्चे के लिए एक अमृत के समान है जो बच्चे को देना ही देना है। तीसरी चीज है कि 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करानी ही करानी है। चौथी चीज है कि बच्चे को ऊपर से आपको कोई जन्म गुट्टी, शहद, अतिरिक्त पानी ऐसा कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। पांचवी जो चीज है बच्चे की पोजीशनिंग, बच्चा सिर्फ निप्पल को सक नहीं करे, पूरा मुंह खुला होना चाहिए, उसके बाद में बच्चे की जो बॉडी है वो सीधा समीप इस अवस्था में हो। और जो छठी चीज है कि महिला को कम से कम 6 माह तक बच्चे पे फोकस करने दे, घर के दूसरे कार्यों में जो महिला की सास है या दादी है या बच्चे के जो पिता है वो उस महिला को समर्थन दे।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से ये जान पाए हैं कि ये जो स्तनपान सप्ताह है ये क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे के उद्देश्य क्या है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो बोलू, अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथे मनी में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरो अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह, यह आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जमी हवा में आपड़े हाल रह, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: खेजड़ी है, सुबबूल है, इस तरह के जो हमारे स्थानीय प्रजाति के पौधे हैं या पेड़ हैं, इनके पौधों को जो है लगाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो जल संरक्षण में हमको बहुत मदद करते हैं, जैसे करंज है, इमली है, कचनार है, बांस है, तो ये ढाल वाली जगह में भी आसानी से लग जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये मिट्टी के कटाव और जल संरक्षण में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को पौधे जो है वो कहाँ, कब और कैसे लगाने हैं और पौधों का चयन उन्हें कैसे करना है, यहीं सर अब मैं जानना चाहूंगी कि वृक्षारोपण के बाद रखरखाव में उनकी क्या भूमिका रहती है।
0: वृक्षारोपण के बाद इनका रखरखाव वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम वृक्षारोपण के बाद इनका रखरखाव नहीं कर पाएंगे तो शायद इनको लगाने का कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो स्थानीय स्तर पे जैसे कि हम देखते हैं पौधे के आसपास कुछ कांटेदार सूखी झाड़ियों को लाके डाल दिया जाता है शुरुआती चरण में, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो भी किया जा सकता है जिससे हमारे पशुधन जो है अनायास उनको नुकसान न पहुंचा दे। पौधरोपण के बाद कम से कम 2 साल तक जो कठिन समय होता है पौधों के लिए वो गर्मी का होता है, तो उस समय थोड़ा सा उनकी सिंचाई में यदि ध्यान दिया जाए तो जरूर वो पौधा हमारा लगाया हुआ जो है पेड़ में तब्दील हो ही जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से अगर कहीं कीट या रोग नियंत्रण वाली बात आती है तो हम कई सारी हमारी खेती में जो है सुझाव देते हैं पेड़ पौधे और फसल के लिए कि किस तरह से बहुत आसानी से बनाए जा सकने वाले गोमूत्र, गोबर या पौध आधारित जो कीट नियंत्रक हैं वो जब हम हमारी फसलों के लिए बनाते हैं तो उन पौधों पे भी थोड़ा सा उनका छिड़काव कर दिया जाए।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से हम हमारे स्थानीय युवा समूह हो या बच्चों को यदि एक समिति जैसा बनाएं या वृक्ष मित्र बनाएं, एक एक पौधे की जिम्मेदारी दें, तो वो उसका ख्याल रख पाएंगे और बेहतर तरीके से यदि कोई समस्या होगी तो वो अपने बड़े बुजुर्गों को बता सकेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उसका रखरखाव सही ढंग से हो।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ये बताया है कि जलवायु परिवर्तन में बारिश के मौसम में वृक्षारोपण का क्या महत्व है और किस तरीके से इसमें हमें ढेर सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सिम के भाई बोनो अवड़े अपने व्यस्त में मनीष जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घड़ी असल तरीका तक घना कानी बातें बताड़ी है। आशा कर रहा हूँ कि आ हंगरी बातें आपने गमी होगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है पर्वतों के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जब किसी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो, नदियाँ जीवनदायिनी हो, जंगल समृद्ध हो और प्रकृति संतुलित हो, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना साकार होती है।
0: जी हाँ,
1: इन सभी का आधार है हमारे पर्वत। श्रोताओ, पर्वत केवल ऊंची चट्टानों का समूह नहीं है, बल्कि अंजलि जल, जंगल, जलवायु, जैव विविधता, संस्कृति और सुरक्षा के महान संरक्षक है।
0: जी जी।
1: अगर पर्वत सुरक्षित है तो हमारा वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी सुरक्षित है। इसीलिए पर्वतों का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि सच्चे स्वराज का भी प्रश्न है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पर्वतों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, पर्वत केवल धरती की ऊंचाई नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति, प्रकृति की समृद्धि और भविष्य की सुरक्षा है। अगर हम पर्वतों को बचाएंगे तो नदियाँ बचेंगी, जंगल बचेंगे, जीवन बचेगा और सच्चे स्वराज का सपना भी साकार होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, धरती की ऊंचाई केवल पर्वतों से नहीं मापी जाती बल्कि उन मूल्यों से मापी जाती है श्रोता साथियों, जो पर्वत हमें सिखाते हैं, जैसे कि दृढ़ता, धैर्य, त्याग और संरक्षण। जब हम स्वराज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में राजनीतिक स्वतंत्रता का विचार आता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जागृति जी, सच्चे अर्थों में स्वराज केवल शासन की स्वतंत्रता नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, आत्मनिर्भरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना भी है।
0: बिल्कुल।
1: इस दृष्टि से यदि किसी प्राकृतिक धरोहर का सबसे बड़ा योगदान है तो वह है हमारे पर्वत। पर्वत केवल चट्टानों के विशाल समूह नहीं है श्रोता साथियों, वे जीवन के संरक्षक हैं, वे नदियों के जन्मदाता हैं, जंगलों के रक्षक हैं और जलवायु के संतुलन करता है, जीव विविधता के संरक्षक हैं और जागृति जी हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार स्तंभ भी है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, पर्वतों की रक्षा करना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि सच्चे स्वराज की रक्षा करना है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि भारत का भौगोलिक स्वरूप पर्वतों के कारण ही इतना समृद्ध है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरावली, दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी घाट जैसे पर्वत श्रृंखलाएं देश की प्राकृतिक धरोहर है। सदियों से ये पर्वत आंधियां, बाढ़, भूकंप और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मानव जीवन की रक्षा करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं अंजलि कि पर्वत हमें संदेश देते हैं कि कठिनाइयों के सामने अड़िग रहना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है और यही संदेश सच्चे स्वराज का भी है। हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। भारत की अधिकांश प्रमुख नदियाँ हिमालय और अन्य पर्वतों से निकलती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी जो नदियाँ हैं वो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है।
0: बिल्कुल।
1: खेती, उद्योग, पेयजल और श्रोता साथियों बिजली उत्पादन सब इन्हीं नदियों पर निर्भर है। यदि पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो नदियाँ सुरक्षित रहेंगी, यदि नदियाँ सुरक्षित रहेंगी तो खेत हरे भरे रहेंगे, गांव समृद्ध होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जल संरक्षण की शुरुआत श्रोता साथियों पर्वत संरक्षण से ही होती है। जागृति जी, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान और श्रोता साथियों प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर्वत इस संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं, वे तापमान को नियंत्रित रखते हैं और जागृति जी हवाओं की दिशा को भी प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में अंधाधुंध कटाई होगी तो इसका असर पूरे देश की जलवायु पर पड़ेगा।
0: जी हाँ।
1: इसलिए पर्वतों की रक्षा करना केवल पहाड़ों को बचाना नहीं श्रोता साथियों बल्कि पूरे देश के मौसम और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे दुर्लभ वनस्पति, औषधि, पौधे, पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली कई औषधियाँ इन्हीं पर्वतीय वनस्पतियों से प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर इन क्षेत्रों का संरक्षण नहीं किया गया तो अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे लिए विलुप्त हो सकते हैं। प्रकृति का प्रत्येक जीवन पर्यावरण के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण सच्चे स्वराज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि हमारी सुरक्षा का प्राकृतिक कवच है।
0: बिल्कुल।
1: कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हमारे सैनिक इन्हीं पर्वतीय सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। यदि पर्वत न होते तो सीमाओं की सुरक्षा कहीं अधिक कठिन होती। इसलिए पर्वतों का सम्मान करना उन सैनिकों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है जागृति जी, जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा की प्राकृतिक ढाल हमारे पर्वत हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज बात कर रहे हैं हम पर्वतों के महत्व को लेकर, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से जैव विविधता का जो खजाना है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही सुरक्षित रहता है, यही बात आती है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की।
1: बिल्कुल।
0: तो जागृति जी, भारत में पर्वतों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कैलाश जैसे अनेक तीर्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ऋषि मुनियों ने पर्वतों की गोद में ही तपस्या की और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया।
1: जी हाँ।
0: कह सकते हैं कि पर्वत हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा, विनम्रता का संदेश देते हैं और यही भावना भारतीय संस्कृति की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग पर्यटन, बागवानी, औषधि खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प से अपनी आजीविका चलाते हैं। सेब, अखरोट, चाय, मसाले और अनेक कृषि उत्पाद पर्वतीय क्षेत्रों की देन है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, अगर इन क्षेत्रों का सतत विकास किया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी अंजलि। और यही आत्मनिर्भर भारत और सच्चे स्वराज का मार्ग है। आज हम देख रहे हैं कि पर्वत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, अवैध खनन, अनियोजित निर्माण, प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और अनियंत्रित पर्यटन। इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जल संकट, भू संकलन, बाढ़ और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियां और भी बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इन सब में हमारे युवा साथी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अगर देश का युवा संकल्प ले तो पर्वत संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश दे सकते हैं, जल स्रोतों की साफ सफाई में भाग ले सकते हैं, इसी के साथ पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब युवा केवल अधिकारों की नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी समझे। हर नागरिक कुछ छोटे छोटे प्रयासों से पर्वत की रक्षा कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग न करें, इसी के साथ पर्यटन के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, वृक्षारोपण करें, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं और श्रोता साथियों, अवैध खनन और जंगलों की कटाई का विरोध करें, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें, प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करें। ऐसे छोटे छोटे प्रयास ही जागृति जी मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, महात्मा गांधी जी ने स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं माना था, बल्कि हम हर कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि उन्होंने आत्मनिर्भरता, नैतिकता और जिम्मेदार नागरिकता से जोड़ा था। अगर हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करेंगे श्रोताओं, तो स्वराज हमारा अधूरा रह जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज तो वही है जहाँ विकास और पर्यावरण साथ साथ चले, जहाँ नदियाँ स्वच्छ हो, जंगल सुरक्षित हो, पर्वत हरे भरे हो और आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संपदा सुरक्षित मिले।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं अंजलि कि पर्वत हमें धैर्य सिखाते हैं, संयम और संतुलित का पाठ पढ़ाते हैं। यही मूल्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल पर्वतों की सुंदरता देखने की नहीं है बल्कि उनके महत्व को समझने की है। पर्वत हमारे जीवन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार है। अगर हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपनी साझी विरासत मानना होगा।
0: बिल्कुल।
1: पर्वतों का सम्मान करना होगा, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा। याद रखिए श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल संसदों में नहीं है बल्कि नदियों की स्वच्छता में है, हरे भरे जंगलों में है, सुरक्षित पर्वतों और जागरूक नागरिकों के आचरण में दिखाई देता है। अंजलि, जब पर्वत सुरक्षित होंगे तब जल सुरक्षित होगा, जब जल सुरक्षित होगा तब जीवन सुरक्षित होगा और जब जीवन सुरक्षित होगा तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होगा। इसीलिए श्रोताओं, पर्वतों की रक्षा का संकल्प हमें लेना होगा क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा ही राष्ट्र की समृद्धि और स्वराज की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमारे देश भारत को प्रकृति ने अनेक अनमोल धरोहर दी है।
1: बिल्कुल।
0: इनमें नदियाँ, जंगल, झीले, समुद्र, पर्वत सभी प्रमुख हैं। पर्वत केवल ऊंची ऊंची चट्टानों का समूह नहीं होते श्रोता साथियों, बल्कि वे जीवन की, संस्कृति, सुरक्षा और समृद्धि के आधार है।
1: बिल्कुल।
0: यदि पर्वत न होते तो नदियाँ नहीं होती, हरियाली नहीं होती, मौसम संतुलित नहीं रहता और मानव जीवन भी संकट में पड़ जाता। पर्वत प्रकृति के प्रहरी हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सदियों से पृथ्वी और मानव जीवन की रक्षा करते आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को पर्वत प्रकृति की अनमोल धरोहर को समझना होगा। वे हमें जल, जंगल, औषधियाँ, स्वच्छ हवा, जीव विविधता, आजीविका, संस्कृति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व जागृति जी पर्वतों से ही जुड़ा हुआ है। यदि पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो नदियाँ बहती रहेंगी और जंगल जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आज आवश्यकता श्रोता साथियों केवल पर्वतों की सुंदरता की प्रशंसा करने की नहीं बल्कि उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है, इसलिए हम सबको पर्वतों को प्रदूषण, अंधाधुंध कटाई और अवैध खनन से बचाना होगा। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करके हम प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की कि पर्वतों का क्या महत्व है, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से पर्वतों के महत्व को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

साथियों, इंसान की सबसे बड़ी भूख हमेशा रोटी की नहीं होती, कई बार वह और थोड़ा पानी की होती है। जी हाँ, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, थोड़ी और तारीफ और थोड़ी और सफलता। लेकिन इस थोड़ा और की दौड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर्याप्त को ही भूल जाएं, जो हमारे पास पहले से मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन शब्द शायद पर्याप्त है, क्योंकि इसे बोलने के लिए जेब से ज्यादा मन का भरा होना बहुत जरूरी है।

साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बार फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहां हम जीवन के उन सवालों पर बात करते हैं जो किताबों से कम और अनुभव से ज्यादा सीखे जाते हैं। जी हाँ, आज का विषय सुनने में छोटा है लेकिन इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीने का एक दृष्टिकोण है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, क्या कभी ऐसा दिन आया है जब आपने कहा हो अब मेरे पास जितना है उसके लिए मैं आभारी हूँ, या फिर हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने आ गई। नई साइकिल मिली तो मोटरसाइकिल चाहिए, और मोटरसाइकिल मिली तो कार, कार मिली तो बड़ी कार, घर बना तो बड़ा घर, मोबाइल खरीदा तो कुछ महीने बाद नया मॉडल चाहिए। दोस्तों, इच्छा होना स्वाभाविक है, प्रगति करना भी आवश्यक है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारी इच्छाएं हमें आगे बढ़ा रही हैं या हम उनकी अंतहीन दौड़ में अपने वर्तमान की खुशियां खोते जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम किसी इच्छा के विरुद्ध नहीं है दोस्तों, यह उस संतुलन की बात है जहां मेहनत भी हो, सपने भी हो, और साथ ही यह एहसास भी हो कि मेरे जीवन में पहले से बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। यही अब बात करते हैं, पर्याप्त का मतलब यह नहीं है कि हम सपने देखना छोड़ दें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम मेहनत करना बंद कर दें। इसका मतलब है जरूरत और लालसा के बीच अंतर समझना। जी हाँ, ये समझना कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक कर उस सफर का आनंद लेना है जिसे हमने मेहनत से तय किया है। जो व्यक्ति दोस्तों हर समय केवल अगले लक्ष्य को देखता है वह अक्सर उस मंजिल की खुशी भी महसूस नहीं कर पाता जहां वह आज खड़ा है। जिसके पास सब कुछ है वह भी बेचैन हो सकता है, और जिसके पास सीमित साधन है वह भी संतुष्ट हो सकता है। फर्क चीजों में नहीं दोस्तों, बल्कि सोच में होता है। पर्याप्त कहना हार मानना नहीं अपने वर्तमान का सम्मान करना होता है। आज अगर हम बात करें कि और की संस्कृति क्यों बढ़ रही है, तो दोस्तों आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर दिन हमें बताया जाता है कि आपके पास जो है उससे बेहतर कुछ और है। नया फोन, नई चीज, नई पहचान, नई उपलब्धि। धीरे धीरे हम तुलना करने लगते हैं और तुलना का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिखाई देगा। ऐसे में पर्याप्त शब्द हमारी जिंदगी से गायब होने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम संतुष्ट हो जाएं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन संतोष और ठहराव एक जैसी बातें नहीं है। एक किसान अच्छी फसल होने पर खुश भी होता है और अगली फसल की तैयारी भी करता है, यही संतुलन है। संतोष हमें मेहनत से नहीं रोकता दोस्तों, बल्कि लालच से बचाता है। इसलिए कई माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हर सुविधा देना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यदि बच्चों को यह न सिखाया गया हो दोस्तों कि जो मिला है उसकी कदर कैसे करें, तो वह हर दिन नई चीज को कुछ समय बाद सामान्य मानने लगेगा। इसलिए कृतज्ञता का संस्कार घर से ही शुरू होता है, जो कि बच्चों को माता पिता को देना चाहिए। इसी के साथ जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है, इसको लेकर कोई अगर आपसे सवाल करे, तो दोस्तों कभी सोचिएगा कि यदि आपके पास पैसा हो लेकिन स्वास्थ्य न हो तो क्या होगा, यदि आपके पास बड़ा घर हो लेकिन परिवार में अपनापन न हो तो क्या होगा, यदि प्रसिद्धि हो लेकिन मन में शांति न हो तो क्या होगा, तो क्या वह जीवन वास्तव में समृद्ध कहलाएगा। दोस्तों, जीवन की सबसे अनमोल चीजें खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान, सुकून, ये तभी मिलते हैं जब मन पर्याप्त कहना सीखते हैं। हर इच्छा पूरी हो जाए यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों खुशी वहां नहीं रहती जहां सब कुछ मिल जाता है, खुशी वहां रहती है जहां जो मिला उसकी कदर की जाए। तो दोस्तों यह थी हमारे कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें। आज आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उससे मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको अवश्य अवगत करवाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे थे कि पर्याप्त जो शब्द है उसका क्या महत्व है और क्या कभी हमने हमारे जीवन में इस शब्द को अपनाया है। यही एक छोटा सा अभ्यास हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज रात सोने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि आज मुझे ऐसी कौन सी 3 चीजें मिली जिसके लिए मैं आभारी हूँ। शायद एक स्वस्थ शरीर, परिवार का साथ, 2 वक्त का भोजन, एक दोस्त की मुस्कान या किसी अजनबी की मदद। धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं दोस्तों, बल्कि यकीन मानिए समृद्धि देखना सीख जाएगा। जी हाँ, जीवन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पाना नहीं, बल्कि जो पाया है उसे समझना, उसका सम्मान करना और उसके साथ सार्थक जीवन जीना भी है। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन दोस्तों इस यात्रा में अपने वर्तमान को मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति हर पड़ाव पर रुककर धन्यवाद देना जानता है वही अगले सफर की ताकत भी जुटा पाता है। जी हाँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं है दोस्तों जो तिजोरी में रखी हो, बल्कि वह है जो मन को चैन देती हो। जब हम और की जगह कभी कभी पर्याप्त कहना सीख जाते हैं, तब जीवन दौड़ नहीं एक सुंदर यात्रा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से केवल अधिक पाने की नहीं, बल्कि जो मिला है उसे पूरे मन से जीने का संकल्प लें, क्योंकि संतोष मंजिल नहीं रुकता बल्कि सफर को अर्थ देता है। जी हाँ, कहना चाहूंगी साथियों कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह है कि जो हमारे पास है क्या हम उसे पूरे मन से जी पा रहे हैं। अक्सर हम अपनी खुशियों को भविष्य की किसी तारीख पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वह हासिल हो जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब और पैसा होगा तब जीवन आसान होगा। लेकिन सच तो यह है कि इच्छाओं की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसका स्थान ले लेती है। यदि मन को संतोष का अभ्यास नहीं सिखाया गया तो अभाव की भावना कभी समाप्त नहीं होगी। जी हाँ दोस्त, यह भी समझना जरूरी है कि पर्याप्त कहना सपनों का अंत नहीं है, बल्कि लालच की सीमा तय करना है। यह हमें सिखाता है श्रोता साथियों कि हम अपनी मेहनत जारी रखें, लेकिन उसी के साथ अपनी खुशी को केवल भविष्य के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल अगले पड़ाव की चिंता करता है वह वर्तमान के सुंदर क्षणों को जी ही नहीं पाता, और जो वर्तमान को खो देता है साथियों वह भविष्य में भी संतोष नहीं पा सकता। आज समाज में प्रतिस्पर्धा जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, ये हम सभी जानते हैं। लोग अपनी तुलना केवल अपने आसपास के लोगों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से करने लगे हैं। ऐसे माहौल में पर्याप्त कहना एक साहसिक निर्णय है। यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे संतुलन, हमारी कृतज्ञता से भी बनती है। जीवन की वास्तविक समृद्धि वही है जहाँ महत्वाकांक्षा और संतोष दोनों साथ साथ चलें। हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि हर नई वस्तु खुशी की गारंटी नहीं होती। उन्हें यह भी समझाना होगा कि सबसे बड़ा सुख नए सामान में नहीं बल्कि नए अनुभव, परिवार के साथ बिताए समय में, सच्चे रिश्ते में और अपने मन की शांति में छिपा होता है। क्योंकि यदि अगली पीढ़ी केवल और चाहिए कि सोच लेकर बड़ी होगी तो उसके पास सुविधाएं तो बहुत होंगी, लेकिन संतोष बहुत कम होगा। इसलिए श्रोता साथियों, हम अपने जीवन में एक नई आदत जोड़ें। जब भी कोई नई उपलब्धि मिले, अगले लक्ष्य की ओर दौड़ने से पहले कुछ पल रुकें, अपने सफर को याद रखें, उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारा साथ दिया, खुद की मेहनत की सराहना करें, और यह ठहराव हमें पीछे नहीं ले जाएगा बल्कि आगे बढ़ने की नई शक्ति देगा। इसलिए कह सकते हैं कि इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, लेकिन संतोष जीवन को गहराई देता है। जिस दिन श्रोता साथियों हम केवल यह गिनना छोड़ देंगे कि हमारे पास क्या नहीं है और ये देखना शुरू कर देंगे कि हमारे पास कितना कुछ है, उसी दिन जीवन का अर्थ बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आगे बढ़िए, अपने सपने देखिए, मेहनत कीजिए, नई ऊंचाइयां छुइए, लेकिन अपनी मुस्कान, अपना सुकून, अपने रिश्ते उस दौड़ की कीमत पर कभी मत खोइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता अधिक इकट्ठा कर लेना नहीं बल्कि इतना समझ लेना है कि
कब रुक कर पूरे दिल से कहा जाए कि आज मेरे पास इतना है कि मैं एक पल के लिए ईश्वर, जीवन और अपने प्रयासों का धन्यवाद कर सकूं। यही पर्याप्त का वास्तविक अर्थ है और यही एक संतुलित, शांत और सार्थक जीवन की सबसे सुंदर पहचान भी है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से जीवन में पर्याप्त कहना हम कब सीखेंगे। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

इसकी ट्रांसलेशन कर दूं, उनके जमाल रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाल रुख रोशन चेहरा, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं